يعملون له ما يشاء من محارم

तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया। बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाओ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया। तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत जवाबित लागू हैं
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर Honda Motorcycle Jupur Etmat Ay Ba Akhtiar Idaro Irshad Autos Ay Honda Showroom Mehrapur 9 Motorcycle G Sale Company Aje Mokarad Kar Rate De Dastyabahe Service Center Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle G Behtreen Service Kai Vendia Hai Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts Khususi Riayat Te Maujood Irshad Autos Te Panji Honda Motorcycle G Karayo Training Computerized Japanese Testing Machine ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر Fuel Adjustment RPMG Adjustment Computerized Japani Machine ذریعے کئی ونیے تھی Honda جے Qualified Technician جی زیر نگرانی Irshad Autos Halani Road Mehra پر رابطے دلائے 0320 180003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
6: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100

0: as the railway.
1: Umeed ke diye jale jahan khwab haqeeqat bante jahan har dil mein jazba.
0: Roshniye jo qaflo manzil taraf gamzan mazhar school system mehrapur shandar tadreesi imarat professor qurban ali memon academic block jo inaqat mehnti mashaq ain tajrubekar tadreesi amlo sarsabz baghi car park physics chemistry ain biology jo audio ain visual sahulat chemistry physics biology riyazi ain english te khususi tawajjo entry test zariye medical ain engineering tehsin natija ran takreer ain zehni azan put taleem ain tarbiyat lai ajhi mazhar school system mehrapur ji विजिट करियो वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमर मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम कांटेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमर प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कांटेक्ट नंबर 03013865453
2: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
3: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastyab Ain
2: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
3: Rabte Laye Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601000
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमार इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: छो परेशान आई
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़जी मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
1: हा दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हुकूमत पेट्रोल 4.42 रुपया ऐं डीजल 6.10 रुपया फी लीटर महांगो करे छॾियो. पेट्रोल जो नओ अघु 380.24 रुपया ऐं डीजल जो नओ अघु 409.42 रुपया फी लीटर थी वियो. अघनि में वाध ते शहरी परेशान आहिनि. हुकूमत खे पेट्रोल सस्तो करण जो मुतालबो. नओं देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िरी ते वेंदड़ भॼणा कतल गड़ी खुदा बख़्श भुट्टो थाणे जी हद सिम शाख वटि पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे साहिब गढ़ो में हाकिम गढ़ो खे कतल कयो. इतलाह ते गड़ी खुदा बख़्श भुट्टो थाणे जी पुलिस पहुची लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नओं देरो इस्पताल मुंतकिल कया.

0: कराची के इलाके सरजानी टाउन में औरतें संदस टे बार गलो कपियल बेदर्दी से कतल सेक्टर डी 7 में घर मां 34 वरन की महवेश 6 वरन की हीरा 5 वरन के हुनैन जा गलो कपियल लाश मिलिया जख्मी हालत में हथ आयल 18 महीने की अश्मीरा अस्पताल में इलाज दौरान दम दिनो पुलिस शक की बुनियाद औरत के मुड़स के गिरफ्तार करे वरतो वडे वजीर वाके की रिपोर्ट तलब करे वरती मुराद अली शाह चयो है वाकई उन अफसोसनाक है जिम्मेवार के कानून के कटेड़े में आंदो वे सिंध के मुख्तलिफ इलाक में तेज बरसात गर्मी जो जोर घटी वो वज किरण वारन वाकन में एक औरत फोत चार जणा जख्मी कराची हैदराबाद उमरकोट मिठी कलोई इस्लामकोट ठठो सजावल कड़ो गंवर शादीलाल दड़ो जाती मीरपुर भठोरो मातली नसरपुर घोड़ाबारी कोटली समेत बेन इलाक में वसकारो डिप्लो के गोठ छाछड़ो में वज किरण सबब औरत राहकी जाल खानी फोत संदस मुड़स बारड़ा जख्मी कलोई भरसा वज किरण सबब नींगर असलम चौहान जख्मी थी पड़ो
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005569।
3: अस्सलाम अदा छो परेशान आई?
4: अदा नौ दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ऐं अदी अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
1: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
0: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूम।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: साथ मुतासिर जी वार करण जी हिदायत कंदे चाहे तो मुतासिर थियल पुलन ऐं रस्तन जी तामीर भी यकीनी बनाई वञे.
4: सऊदी अरब शहर ते हुसैन के अमलन में 13 जणा जे जख्मी थियण जी तस्दीक करे छॾी. हुसैन के अमलन जो भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान. सऊदी इत्तेहाद फौज चयो आहे त हुसी शहरी आबादीअ खे निशानो बणाए वॾी ग़लती कई आहे. हुसैन खे अमलन जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो. हुसैन गुज़िरियल ॾींहुं सऊदीअ ते हमले जी दावा कई हुई.
3: सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अॼु मिस्र पहुचंदो. मिस्री सदर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो. ख़िते जी सूरतहाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं. UAE जे बि परदेही वज़ीर जा मिस्र, कतर ऐं कुवैत जे अहम मुनसबनि सां राब्ता. ख़िते जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते मुशावरत कई.
4: तेल ऐं आबनायरम जे सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे. ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं. ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो त थींदियूं ऐं कॾहिं चवे थो त ॻाल्हियुनि लाइ तयारु हुजण जा बयान ॾिए थो. संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे.

0: مہنگائی جی گھانیے میں پسنجندڑ عوام تے حکومت کے رحم نہ آئے ہو. پیٹرول اور ڈیزل جی قیمت میں گاٹے ٹروڑ واد. پیٹرول 380 روپیہ 24 پیسہ ہے, ڈیزل 409 روپیہ 42 پیسہ فی لیٹر تھی ویو. اگن میں واد تے شہری پریشان آئے, حکومت کا پیٹرول سستو کرن جو مطالبو.
1: نو دیرو برساں پرانے تکرار تا حاضری تے ویندڑ بجنا قتل گڑی خدا بخش بوٹو تھانے جی حد میں سما شاخ وٹ پرانے تکرار تا ہتھیار بندن فائرنگ کرے سعید ایں حاکم کڑیو کے قتل کیو. اطلاع تے گڑی خدا بخش بوٹو تھانے جی پولیس پہنچی لاش تاویل میں وٹھی پوسٹ مارٹم لائے نو دیرو اسپتال منتقل کیا.
0: تھاروشاہ برساں منجٹ میں سیڑا مائنر ماں پیرسن جو لاش ہے تے سنجانپ نتی سگی گوٹھان پولیس کے اطلاع بعد لاش شاخ ماں کڈی منجٹ اسپتال پہنچایا. پولیس موجب لاش جی سنجانپ نتی سگی ہے, ودیک جانچ کرے رہا ہوں. تھانو بلا خان برساں نامعلوم شخص جو چچریل حالت میں لاش ہتھ آیا ہے. پولیس موجب فوتی جی عمر 65 ورن جی لگی رہی ہے. لگے تو پیرسن کے کہیں گاڑی ٹکر ہے ہے, سندس چہرہ چچریل ہے. سنجانپ لائے کوشش کرے رہا ہوں.
1: ऐं खेरापुर वेझो नांग निगर समेत टिनि ॼणनि खे कखे विधो इस्पताल मुंतकिल. ॻोठु अला बचाए जतोईअ में नौजवान अशरफ जतोईअ खे नांग कखियो. ॻोठु मिठड़ीअ में बि रांदि कंदड़ निगर काशिफ दस्तीअ खे नांग कखियो. ॻोठु सावण में हारी बेगलीअ खे ज़मीन ते कमु करण दौरान नांग कखियो. नांग जा कखियल 3 ॼणा इस्पताल मुंतकिल.
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
3: असली चीजान चारों मसालों की सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा. जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त. जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद. जी जान चारों मसालो. जी जान चारों मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो.
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज. मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे. दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे. इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं. नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में. एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें. दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम. हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें. मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109.
5: This program is brought to you by
6: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
7: Irshad Autos ai Honda showroom Mehrapur. Honda motorcycle jo pur aitmad ai ba akhtiyar idaro. Irshad Autos ai Honda showroom Mehrapur. Nain motorcycle ji sale company je mukarrar kar rate te dastiyab hai. Service center Atlas Honda Limited jo warranty claim center service area jite Honda motorcycle ji behtareen service kai vendi hai. Honda company ja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood. Irshad Autos te panji Honda motorcycle ji karayo training. Computerized Japanese testing machine zariye jeh mein mile thi motorcycle ji karkardegi tamam behtar. Fuel adjustment RPMG adjustment computerized Japanese machine zariye kai bani thi. Honda je qualified technician ji zair nigrani. Irshad Autos Halani Road Mehrapur. Rabte de lai 0320180003.
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
5: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
11: 03013992836।
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिले आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: में मथा रखण घुर्जे वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान तकरीब के खिताब कंदे आईन ते अमल करे सके तो मुआशरे में इस्तेहकाम आणे सके तो नई अदालती साल में इंसाफ की फरहमी वो अज़म मरजायूं था।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां एनडीएम चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। एनडीएम में चेयरमैन वज़ीर आज़म के मुल्क में बरसाती सूरत हाल है अगवाट कयल इंतजाम बाबत ब्रीफिंग डी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरसात मुतासर के वार कर हिदायत कन्दे तो मुतासर थियल पुल रस्तन की तामीर के भी यकीनी बनाए वे।
1: लबनानी घरू वजीर की घरू वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात। बितरफन लागापन समेत खिते के सूरत हाल से गालियों बिन्हीं अगवाण के मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधाण से इतफाक। लबनानी घरू वजीर के घरू वजारत के ऑफिस पहुंचण से सलामी भी डिनी वही।
2: सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अज मिस्र पहुंचन मिस्री सदर बेन से मुलाकात कद खिते की सूरतहाल समेत बिन तरफन लागापन से गाल वेंद। यूएए के भी परदेही वजीर से मिस्र कतर ए कुवैत के हम मुनसिबन से राबता खिते की तब्दील थन्दड़ सूरतहाल से मुशावरत कई।
1: तेल ए आबना हरम की सूरतहाल हाँ तब्दील थी चुकी है। ईरान जा शर्त कबूल करण तई गाल ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार मोहसिन रज़ई है तो अमेरिकी सदर कदें चवे तो गाल कदें गाल करण लाय तैयार होजन जा बयान दे तो संदस बयान ते कें गुमराह न थियण घुर्जे।

0: जी घाणीअ में पिसजंदड़ अवाम ते हुकूमत खे रहम न आयो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमत में घाटे टोड़ वाध। पेट्रोल 380 रुपया 24 पैसा ऐं डीज़ल 409 रुपया 42 पैसा फी लीटर थी वियो। अघनि में वाध ते शहरी परेशान आहिनि। हुकूमत खां पेट्रोल सस्तो करण जो मुतालबो।
1: कराचीअ जे इलाइक़े क्लिफ्टन में प्लाटनि जे गैर क़ानूनी अलाटमेंट वारे केस जे एहतसाब अदालत में ॿुधणी वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया पेश न थिया। एहतसाब अदालत वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो।
0: मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी। जांच आफिसर कमीशन में वधीक दस्तावेज़ जमा कराए छॾिया। DSP सिराज लाशारी पारां जमा करायल दस्तावेज़नि में शाहिदनि जा वधीक बयान ऐं डायरी बि शामिल। जांच आफिसर मीर रज़ा जे साथी एहसान अली जो हलफ़नामो बि जमा करायो।
1: नओं देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िरीअ ते वेंदड़ ॿजणा क़तल गड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो थाणे जे हद सिम शाख वटि पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे सईद ऐं हाकिम कड़ियो खे क़तल कयो। इतलाह ते गड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो थाणे जी पुलिस पहुची लाश तवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नओं देरो इस्पताल मुंतकिल कया।
0: थारूशाह भरिसां मञत में सहिड़ा माइनर माउ पीउ जो लाश हथ सुञाणप न थी सघी। ॻोठाणनि पुलिस खे इतलाह बाद लाश शाख मां कढी मञत इस्पताल पहुचायो। पुलिस मूजिब लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। थाणो गुला खान भरिसां नामालूम शख़्स जो चिचिरियल हालत में लाश हथ आयो आहे। पुलिस मूजिब फौतीअ जी उमिरि 65 साल ॿुधाई रहिया आहे। लॻे थो त पीउ खे कंहिं गाॾी टकर हयो आहे। संदसि चेहरो चिचिरियल आहे। सुञाणप लाइ कोशिश करे रहिया आहियूं।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03333105109, 03003105109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: इन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: 0301-399-2836।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हाँ साईं गाल भी एड़ी ही आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरन खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हीअ चारो ढोरन जो हाज़मो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थियन था। गोश्त सां गॾो गॾु खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइन ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन बाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000072734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे।
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मजे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस سم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
0: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सरकार जारी रखना ते इत्तेफाक लबनानी घरू वजीर जी घरू वजीर मोहसिन नकी से मुलाकात बितरफन लागापन समेत खिते जे सूरत हाल ते गालियों बिनी अगवाणन जो मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधाइण ते इत्तेफाक लबनानी घरू वजीर के घरू वजारत जे ऑफिस पहुंचण ते सलामी भी डिनी वई
4: सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अज मिसर पहुंचंदो मिस्री सदर ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो खिते जी सूरतहाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं UAE जे बि परॾेही वज़ीर जा मिसर कतर ऐं कुवैत जे हम मुनसिबनि सां राबता खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते मुशावरत कई
3: तेल ऐं आबनारम जी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयारु हुजण जा बयान ॾे थो संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे
4: आइन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आइन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे वफ़ाकी आइनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आइन ते अमल करण खे मुआशरे में इस्तेहकाम आणे सघिजे थो नई अदालती साल में इंसाफ़ जी फरहमी वारो अज़म वरजायूं था
3: कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में प्लाटनि जे गैर क़ानूनी अलाटमेंट वारे केस जे एहतसाब अदालत में ॿुधणी वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया पेश न थिया एहतसाब अदालत वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो
4: मीर रज़ा केस जे अदालती जांच जारी जांच आफ़िसर कमीशन में वधीक दस्तावेज़ जमा कराए छॾिया DSP सिराज लाशारी पारां जमा करायल दस्तावेज़नि में शाहिदनि जा वधीक बयान ऐं डायरी बि शामिल जांच आफ़िसर मीर रज़ा जे साथी अहसान अनीस जो बि हलफ़नामो बि जमा करायो
3: नओं देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िरीअ ते वेंदड़ ॿ ॼणा क़तल गढ़ी ख़ुदाबख़्श भुटो थाणे जे हद सिम शाख वटि पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे सईद ऐं हाकिम कड़ो खे क़तल कयो इतलाउ ते गढ़ी ख़ुदाबख़्श भुटो थाणे जी पुलिस पहुची लाश तवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नओं देरो इस्पताल मुंतक़िल कया
4: थारू शाह भरिसां मञट में सहिड़ा माइनर माम पीरसन जे लाश जी सुञाणप थी वई पीरसन जी सुञाणप कंडियारो वासी अलारिनो खोखर जे नाले सां कई वई कारण मालूम न थियो थाणो बुला खान भरिसां नामालूम शख़्स जो चिचिरियल हालत में लाश थियो आहे पुलिस मौजूद फोती जी उमिरि 65 वरियल लॻ ॿुधाई रही आहे पीरसन खे कंहिं गाॾीअ टकर हयो आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सैनिक दंगल का तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के समंद है, जादू की बारिश और लाजवाब खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागते समय से आसमां तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार दम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप मौजूद हैं। आप लोगों को सही से बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह के खूबसूरती में चार चांद लगने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, पहचानिए ताकि आप सही से जो है ना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकें और सही वाले प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सके। क्योंकि कई मरतबा ये चीज भी थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर देती है कि भाई हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक है। तो अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, आप लोगों को जरा बताते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ तो होगा ना जो इतनी ज्यादा बातें बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए हमारे साथ और अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीके कार होने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से ब्यूटीफुल बनने के लिए रेडी शेडी हो जाइए और हमारे साथ साथ मजे करने के लिए भी रेडी शेडी हो जाइए और इसी के साथ साथ आप जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की वह हालत उनके से ही आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद है और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ लातादाज सी बातें करने वाले हैं और जाहिर सी बातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी चर्चे होने वाले हैं। चर्चे होंगे तभी तो आपके थोड़े बहुत से खर्चे होंगे ना, थोड़े बहुत से क्या मतलब अपने ऊपर खर्चा किया करें अच्छी बात होती है। और अगर आप हाँ जी हमारे साथ साथ जुड़ना चाहते हैं तो तरीकेकार क्या होंगे प्रोग्राम के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 और मालाने का काम करेगी बैजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्के समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है जी एक बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा। तो हम ऐसा करते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक बहुत प्यारा सा कसीदा सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, तो इस्तेमाल कीजिए और हमेशा खूबसूरत होती रही है।

तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा जिसे हम सब मिलकर सुन रहे थे और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होंगी। लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामिल प्रोग्राम कैसे होने वाले हैं ये भी आप लोगों को जरा बताएंगे। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा आप लोगों को बता देते हैं, ताकि अगर आप हमें मैसेज करें शामिल प्रोग्राम हो जाए तो आज का सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आज के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ यूं होगा कि आप सारे लोग मुझे बताइए। हाँ भाई, हम बहुत सारी ख्वाहिशात कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि भाई ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए। और जब ये हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो हम ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा कर रहे होते थे कि काश पेशन जो मी वजे हाँ बिल्कुल, यो काश तो हर कहीं पानी जिंदगी में मुखे लगे तो लाजमी कर तो आज मुखे यू बधायो अगर वो काश तुम जो पूरो थी वने, यानी कि हाँ पैसन जो मी वसे तो तुम केतरा पैसा उतां खणंदा, यानी कि असो यू हों ना बाबा पैसन जो मी वसे तो एतरा पैसा खणंदासी। सो आज मुखे बुधायो अगर हाँ पैसन जो मी वसे तो केतरा पैसा उन मी मां खणंदा। ठीक है, अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, नाम आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक किया करें, लाइक करने से ये होता है कि भाई हमारी जो पोस्ट होती है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ही चाहते हैं भाई आपके साथ साथ बहुत सारे लोग मजीद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें, उनको भी पता चले कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी लोगों तक हमारी पोस्ट को पहुंचाइए। ठीक है, दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाएंगे। ठीक है जी, और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, यानी कि अब तो भाई डबल मजे हैं आप लोगों के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी स्किन का फेस वॉश हम लगाएंगे, लेकिन क्या भाई क्वालिटीज हैं डी स्किन के फेस वॉश की, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी भरपूर पूरे प्रोग्राम में वो तमाम बातें जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। कई मरतबा मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको कख पता नहीं होता अपनी स्किन के बारे में, लेकिन हाँ उनको जो भी प्रोडक्ट बताया जाता है ना वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आपको बताया जाए उससे पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जान लें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें तो ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से नहीं लगा पाते हैं, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो उसके ऊपर वैसे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ऐसे उठाकर सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाने होते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये चीजें आप जरा उसके अंदर देखा करें कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए है या फिर नहीं। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र आता है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही बात मुझे खास बनाती है डी स्किन को कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है जिसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। हर स्किन वाला लोग जो है ना वो आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगा पाएगा, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए तैयार की गई और इस तरह तैयार की गई है कि इसे हर इंसान लगा पाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत सारी बातें हैं, सारे प्रोग्राम में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके फीडबैक्स की जाने भी आ जाएंगे। आपने बस पोस्ट को लाइक और शेयर जो है ना वो जरा कंटिन्यू रखना है। और एसएनएलई भुगटी भाई हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना गोठ रूहल खान भुगटी खान एसएनएलई भुगटी असाके ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान। और फरवा कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं फरवा, बताएं कैसी हैं। और फहीम शेख हमारे साथ ही लिखते हैं कि विसरे सारो लोक शाला न विसरे तू तो के केडो मु सांढियो आए सा हमें, अस्सलाम वालेकुम मौलाली सलामत अदा छा लाए खुश आयो सफा चा को स्लेट कला मस जी डबी असा भी रुलंदा फिरंदा अच्छी गया सी प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी आवांगे, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और फरवा कहती हैं आप ही अर्ज किया है कैसे भुला देते हैं लोग तेरी तेरी खुदाई को, क्या रब मुझे तो तेरा बनाया हुआ एक इंसान भुलाया नहीं जाता। ओके ओके वेरी नाइस। अच्छा चाचा खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते बेटा सिडो हाउ आर यू, हो फाइन जी मां सब ठीक है, था बताया कि आयो कहते हैं
थैंक्स फॉर कमिंग टुडे इन डी स्किन ब्यूटी शो. मैंने तो आना ही था, क्या मतलब मैंने नहीं आना था. चलिए बहुत शुक्रिया, आप भी आ चुके हैं. और रशीद खोजू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. और आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू. अली रजा भाई हमें सुन रहे हैं जी, अली रजा भाई हमें दुबई से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और जी फहीम भाई लिखते हैं कि भाऊ जैसा फरमाइश नकन आसी जे सफा भला बारत ही आया आयो ओ ये बाबा ओ ये सब रोज भला बारत ही अचो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहो. और कहते हैं कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना. वाह वाह वाह वाह. अच्छा मोहम्मद मीरन जकरानी में सुन रहे हैं, जेकब आबाद से बहुत शुक्रिया. और आसिफ अली हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम. आसिफ अली कुरेशी फ्रॉम नूरियाबाद. भाऊ असां भी अच्छी वयासी तमाम जे प्यारे शो में, हम आप और आपकी पूरी टीम के बड़े. अच्छा यानी कि आप शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे बात जरा समझ नहीं आई. कहते आपने हमारे सिटी में अपना शो स्टार्ट किया है, हम आपको नूरियाबाद में वेलकम कहते हैं. बहुत शुक्रिया नूरियाबाद वाले भाई को वेलकम कहते हैं. इकबाल आशारी आप हमें सुन रही थी मीरपुर खास से, आपको भी खुशामदीद कहा जाता है. और मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. नवाब अकेले अकेले. अच्छा आप आ चुके हैं अकेले अकेले, सही कहते. कैसी हैं आप आज? अच्छा आज फारिक था, सोचा आपका असर खाऊं. और सिडोर जी तबीयत ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है. और आप हमें सुन रहे ठूफ चूसल से, और आप मुझे बताएं आपके एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बस आप जाएंगे और परचेज करके आ जाएंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो डी स्किन फेस वॉश हो, ये दोनों चीजें आपकी खूबसूरती को बढ़ा देंगी जनाब. तो जाइए परचेज करके आइए और टॉपिक को जरा फॉलो करते जाइए. और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाए, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा. ये बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा पूरे पूरे 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए.

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडी.
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू है.
3: नूरे जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच.
4: जीजा ढोर चारो मसालो आजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा.
5: हां भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा.
6: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो.
7: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. 03003385569. खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज. एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार. कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. 03003385569.

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़खाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए तैयार की गई है। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जाना आप लोगों के लिए जरूरी बात बन जाती है। मैं वैसे भी आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई आप लोगों के लिए तैयार की गई है, ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला मतलब इसे तैयार किया गया है स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने बनाई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फार्बोटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार कर चुके हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट जल्दी से सूट नहीं करता, तो क्या हम लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप भी लगा सकते हैं, सारे लोग ही लगा सकते हैं। चाहे आप मर्द हसरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ एक और बात भी आप लोगों को बताते चले, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, तो ये जो चीजें हैं यानी कि विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर एड की गई है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यस उन्हीं में से एक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीड्स फार्मुलेशन है, ये जनाब ऐसा आपकी स्किन के अंदर काम करते हैं जैसा आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन को, जो कि भाई बड़े महंगे महंगे फेशियल्स करा के आती हैं, और महंगे महंगे फेशियल्स कराने के बाद जो उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है ना, बहुत सारे पैसे देने के बाद, बहुत सारा वक्त देने के बाद, तो बिल्कुल विटामिन डी बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं, ये वैसा ही काम आपकी स्किन के ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये आपके चेहरे पर फेशियल का निखार देने वाली एक नाइट क्रीम है। यानी कि अब ऐसा वाला सीन हो जाएगा कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती रहेगी, आपके पैसे भी थोड़े कम खर्च होंगे और आपका टाइम भी बचता रहेगा। बिल्कुल जी, मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो इसे मुझे लगता है कि फायदा उठाना चाहिए। और फायदा उठाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल, तो आपके चेहरे पर अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द हजरात तीन हर कोई आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए। वैसे भी अगर आप अपनी खूबसूरती को सही वाले प्रोडक्ट नहीं देंगे, अपने चेहरे को नहीं पहचानेंगे कि भैया के चेहरे को किस चीज की नीड है, तो आपको सही वाला हुसन कैसे मिलेगा? तो अगर आप भी परेशान हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो डी स्किन

देखिएगा जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं, डी स्किन फेस वॉश लगाएं, भाई हर तरह से आपकी खूबसूरती आपको वेलकम कर रही है। तो आप भी जरा अपनी खूबसूरती को वेलकम कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का यूज करते जाइए। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि भाई हमारे एरिया में तो मिल नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम क्या करें। भाई आपके अगर एरिया में नहीं मिल रहे प्रोडक्ट तो आप घबराते क्यों हैं? आपको जो नंबर बताऊंगी ना, बस उन नंबर के ऊपर आपने रब्ता करना होता है और जैसे ही आप रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बी ओ नंबर आहे 03-27-38-4309 बड़ी 332 है 73-84-309 ही नंबर साइन जेके तमा डायल करी पांचे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। आसानी आ पापा तमा जिला मार्केट में एड़ा भला भला प्रोडक्ट्स अची वया है, वन्यो वठी चो एंड पांचे खूबसूरती जो ख्याल रखो। उन के अलावा मामा का सवाल पूछो आज के प्रोग्राम में तो तमा मुखे बुधायो पया फर्ज कयो जे नंदपण में असा चंदा सी अल्लाह साईं केसन जो मी वसा तो बिल्कुल अगर आज आप ऐसा मुझे मतलब बताइए कि हाँ जी आज अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाने वाले हैं, हाँ जी ये बात मुझे बताइए। और साथ साथ आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है पोस्ट को जरा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर करने से ये फायदा होता है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, बहुत सारे लोगों को हम ये बता पाएंगे कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। ओके जी, तो नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और मुझे जरूर बताया करें कि कहां कहां पर अवेलेबल कराने अभी बाकी हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका सिटी आपका गांव रहता है तो क्यों रह रहा है भाई। नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, अवेलेबल कराइए और खूबसूरत हो जाइए।

ओवैसी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी फीडबैक्स की जाने बात आते हैं, कौन सी बातें चल रही हैं देखें तो जरा। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर एस एन आर बानी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ओ माय फेवरेट आरजे मेडम मुस्कान जी, कैसी हैं आप? मैं भी आ गया, वेलकम। आपको भी वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। सालार सिकंदर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आसिफ भाई कहते हैं कि भाऊ गानों तो बुधाए जो बबई तव्हां कसीदो फरमाइश कयो आहे, कसीदो सां प्रोग्राम जी स्टार्टिंग में लॻाईंदा आहियो, सो सुभाणे तव्हां जे लाइ हलाईंदासीं, ठीकु आहे? और कहते कि भाऊ पैसों की बारिश किस इलाके में होगी, हर जगह ही होने वाली है। तैयारी पकड़िए जरा आप। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजाल लिखते हैं कि टॉपिक, अगर पैसों की बारिश हो तो मैं जब तक पैसों की बरसात बंद ना हो तब तक उठाता रहूंगा और बाद में गिन के बताऊंगा। ओके ओके, वैसे लॉजिकल बात है। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि मैं पैसों की बारिश से बस इतने पैसे उठाऊंगा जिससे मैं, अच्छा सही बात है भाई, अच्छी बात है। और यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयो वाह, बस चाहे पानी जो इंतजाम कर, बाकी आ फुल आया। वो भी पी चुआ। मजाक मजाक बिल्कुल, तांगे चाय प्यारी दासी, बबा थदो भी प्यारी दासी। अच्छा उनके अलावा साजिद

संजीव रानी सबकी। हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। साजिद भाईजान प्रोग्राम सुन रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दर्द दिल हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम में आपको भी वेलकम कहा जाता है। और कहती हैं कि कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतारें होती हैं। लोगों को हमेशा खुद से बेहतर लोग जहर लगते हैं। सही कहा आपने। परवा कहती हैं कि टॉपिक आप और मैं पैसे हाफ हाफ करेंगे, अच्छा उठाएंगे कितना ये तो बताएं। अच्छा, नसीम भाई कहते हैं कि विलेज अली बख्श जाखरो नूरियाबाद का नसीम जाखरो असी नूरियाबाद वारा तमा जो शो रोज बुधंदा आयो शो कसा। थैंक यू जी तां जो मोहब्बतू आन तां प्रोग्राम के पसंद कंदा आयो। पर नूरियाबाद में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन? यो त मके हाल अहिवाल दियो। सिर्फ प्रोग्राम बुधो था या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो था? अच्छा, हजार भाई भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, ठीक ठाक है? कहाँ गायब हो चुके थे? ओके जी, आसिफ भाई भी हमें नूरियाबाद से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हजार भाई कहते हैं आज अपनी पसंद का कोई एआई सॉन्ग प्ले करना। ओके डन। अच्छा, हिदायतुल्ला लिखते हैं कि सलाम कैसी हो, मेरा दोस्त मुख्तियार भी आपका शो सुन रहा है, ये सेहरा तो चलाना। अच्छा मैं ठीक हूं, ॾिसां थी बिल्कुल तव्हांजी पसंदि हलाईंदा सी। और जावेद अली कहते हैं गोठ मोहम्मद उस्मान शंबानी खां नजफ अली शंबानी। ओके जी, भाई को वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं अधा कलाक खां आउं ॾिसां पियो जी लाइव ते, अचां थो, लाइव बंदि थो थी वञे, कमेंट हितां वञनि पिया तो वटि अचनि न पिया, छा मसलो आहे? न न, कमेंट तव्हांजा बिल्कुलु प्रोपर मूं वटि अचनि पिया, रीड बि थियनि पिया, तव्हां ॾिसी वठो तव्हां वटि कोई मसलो हूंदो शायदि। कहते हैं कल शाम बि हिकिड़ो कॉमेंट बि रीड कोन थियो, थिया हुआ बाबा, मूं पाण कया हुआ। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि अगर फर्ज कर लीजिए पैसों की बारिश हो जाए तो आप कितने पैसे उठाने वाले हैं? ओके जी, टॉपिक को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है। जितना आप शेयर करेंगे पोस्ट को उतने सारे लोगों को हम बता पाएंगे कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि भैया की स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते हैं ना, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को डॉक्टर औरत का फोटो नजर आएगा या निशानी आहे, निशानी जे तौर ते तव्हां समझी वठो। अगर तव्हां दुकानदार वटि वञो था, उनखे चओ भाउ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, ऐं हू तव्हांखे का ॿी क्रीम पकड़ाए छॾे, तव्हांखे ख़बर न हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे कीअं, त इहा तव्हांखे ख़बर हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो अथव। सही आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इहा निशानी ॾिसी करे तव्हां वठी सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां डी स्किन जो फेस वॉश भी लाजमी वठिजो, ॿई चीजूं गॾु इस्तेमाल कजे, तव्हांखे खूबसूरती मिले मुकमल तरीक़े सां।

हाँ जी, कभी कभी वाकई में चीजें भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता हो सकता है, वैसे मैं खुद ही सोच रही थी पीछे किए थे या नहीं किए थे। चले बहुत शुक्रिया। अच्छा गाना सुन रही, बहुत ही खूबसूरत सा। बिल्कुल जी, कोशिश किया करें प्रोग्राम में, अगर आप मुझे फरमाइश कर रहे हैं तो गाना ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम में चलने जैसा होना चाहिए। यानी कि कई मरतबा आप ऐसी फरमाइश करते तो थोड़ा सा मरा हुआ गाना होता है, तो जिंदा जिंदा गानों की फरमाइश किया करें। अच्छा इरम भी हमारा शो सुन रही है, इरम थैंक यू वेरी मच, बस दुआ कीजिएगा। जाकिर अहमद हमारे साथ है, जाकिर अहमद भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है, कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आहे, सॉन्ग बुधराए जो शमन जो, बिल्कुल शमन जी गाने जी फरमाइश तांजी पूरी कदा सी। अच्छा अच्छा खाले तमाम भी पैनल से मौजूद है, तमाम भी गाने जी फरमाइश कई आप कहो गानों फरमाइश कर। और कहते हैं कि आप आती हैं तो शो करने टाइम अच्छा पास हो जाता है, बाकी दो दिन से आपने अपनी परंपरा नहीं निभाई बस मैं जरा सैडी गाने सुनकर बड़ी बेजार हो चुकी हूँ, तो जरा आप अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। अताउला मरी हमारे साथ ही विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। मीरपुर खास में हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज करके आइएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मुझे जरा बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं कि डी स्किन अच्छी क्रीम है, मेरी फैमिली इस्तेमाल करती है, ये देखें भाई। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। वैसे अब डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में आ चुका है, तो वो भी ट्राई करके देखिएगा।

अच्छा नजीर कोसू बलूचिस्तान से कहते हैं कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा मेरा वाकई स्किन के बारे में पढ़ पढ़ के और जान जान के इतनी तो नॉलेज हो चुकी है कि अगर मैं स्किन की डॉक्टर बन जाऊं तो आराम से बन सकती हूँ। हाँ जी, मुझे बड़ी नॉलेज हो चुकी है। तो बिल्कुल आप दी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा स्मार्ट भाई लिखते हैं कि टॉपिक आप सिर्फ इतरो पैसो कनदस जेतरो अंबानी वटा है, बस बस इतरो बस तई ता चो। चलें क्या बात है, गाना एंजॉय कीजिए। और यहाँ टाइम हो चुका है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे। वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल के तेज आसान ए शफाफ बनाने की हिदायत कर छी। बरामदी सनअतुन लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहकीक ए जिदत के हथी डियण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत हेठ मुल्की बरामद वधाइण ऐं मुआशी तरक्की खे तेज करण बाबत इजलास। शहबाज शरीफ चयो आहे त बरामद में वधीक मुल्की मईशत तरक्की जो बुनियाद बणायो। रवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडीअ में बरामद लाइ तयार कयो पियो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि।

0: अमेरिका ईरान से जारी जंग में 18 फौजन के मारजण ए 417 जख्मी थियण की तस्दीक कर छी। 18 जंगी जहाज ए हेलीकॉप्टर भी तबाह थियण जो एतराफ। 30 ड्रोन भी तबाह ए हथियार के जखीरे में भी घटताई थियण जो एतराफ कर छो। ईरान से जंग में थियल नुकसान के कांग्रेस पारा तैयार कर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिब ईरान से जंग सबब अमेरिका के हथियार वाले जखीरे में घटताई थी है जैसी बहाली में रंडकू आन। हथियार में वाधा घणो वक्त लगी सकमान है। उर्दन में मौजूद अमेरिकी अड्डन के भी वो नुकसान पौतो है। जंगी जहाजन हेलीकॉप्टर जो भी वो नुकसान पो है।
1: तेल आबन अरुण की सूरत हाल हाँ तब्दील। तेल आबन अरुम की सूरत हाल हाँ तब्दील थी चुकी है। ईरान जा शर्त कबूल करण तई गाल थन्दू। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार मोहसिन रज़ई तैयार होजन जा बयान डे तो संदस बयान कें गुमराह न थियण घुर्जे।
0: लुबनानी घरों वजीर के घरों वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात। बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बिन्हीं अगवाणन जो मुख्तलिफ शोबन में सहकार। बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बिन्हीं अगवाणन जो मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधाण ते इतफाक। लुबनानी घरों वजीर के घरों वजारत की ऑफिस पहुंचण ते सलामी भी डिनी वही।
1: आइन में अख्तियार ए हदू वाजे थियल आन। अख्तियार के इस्तेमाल में आइन के हर सूरत में मथाओ रखण घुर्जे। वफाकी आइन अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान तकरीब के खिताब कंदे चयो त आइन ते अमल करे मुआशरे में इस्तेहकाम आणे सघे थो। नई अदालती साल में इंसाफ की फरहमी वारो अज़म मरजायो था।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03000310509।

0: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर अई गोश्त वधाए अवहां के खुशहाल बनाए हर पंसार अई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
1: इरशाद ऑटोस अई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद अई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस अई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: रब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
2: अदा, नओ दुकान खोलियो तम, पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा,
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा, जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा पर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों ना बातें हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे जो चल रहे हैं, आप लोगों के थोड़े से खर्चे कराएंगे तो क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल जी, पाने दे थोड़ो खर्च करना गयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से कोन मिली रही आहे त जेको नंबर ॿुधायां थी न, नंबर ते राबतो कयो न, चेंज हलियो अथव भला, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो उनखे ॿुधायो भाई साहब असांजे एरिया में कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो भाई साहब आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए और खूबसूरत बने रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो आप क्यों घबराते हैं, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला तो इसका मतलब ये है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है ना वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है, और स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है, तो बस गाली खत्म थी वही ना बाबा साईं। तो तव्हांजी स्किन अगर सेंसिटिव आहे या फिर कॉम्बिनेशन टाइप आहे केड़ी भी स्किन जी मथा, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो तव्हांखे खबर हुजण घुर्जे, अगर तव्हां मार्केट वञो था परचेज करण वञो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो वठी करे तलब कयो, ठीक आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी थोरी अगरि निशानी तव्हांखे ॿुधाई वञे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो अथव, ओ इहा अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बिल्कुल जी, सुञाणे वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, यानी कि डॉक्टर्स मिली करे तयार कई आहे, तॾहिं डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, जेका सोनी डॉक्टर हुन जो। तव्हां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, ऐं डी स्किन तव्हांजी भी खूबसूरती खे सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदी। ऐं तव्हांजी खूबसूरती अगरि थोरो तव्हांखे परेशान करे रही आहे, तव्हां पहिरियां त ख़ूबसूरत हूंदा हुआ पर वक़्तु जीअं गुज़रे पए तव्हांजी खूबसूरती थोरी डिम थी वई आहे, तव्हांजी स्किन थोरी मतिलबु बेजान थी वई आहे, बेरोनक थी वई आहे, तव्हांजे चहिरे ते जेको निखार आहे, ग्लो आहे, उहो कॾहिं ग़ाइब थी वियो आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फ़ौरन बाद ई तव्हांजी स्किन ते निखार अचणु शुरू थी वेंदा, तव्हांजे चहिरे ते जेके रिंकल्स आहिनि, रिंकल्स आहिनि, ब्लैक हेड्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, या फिर स्किन डिम थी वई आहे, डल थी वई आहे, त हर मसले जो हल आहे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नतायज आपको देने वाली है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। जदीद अज़ा इसके अंदर ऐड की गई है, जैसे कि विटामिन ए बीट्स, माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन, अल्फारबुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है, और ये क्रीम रात भर काम करती है आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जल्द को चमकदार बनाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, आपके चेहरे पर निखार लाने के लिए, और बहुत सारी जो स्किन होती है ना जिन लोगों की भाई आपके चेहरे पर जो है ना वो ऐसा होता है कि वक्त से पहले आप बूढ़े नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर काफी ज्यादा रिंकल्स आ चुके होते हैं, तो उन तमाम चीजों से भी आपको महफूज रखने वाली है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आज भी पहले नंबर पर है, और आपकी जल्द की साख्त बेहतर बनाएगी, आपकी स्किन जो है वो आपको एहसास होगा भाई बहुत खूबसूरत होती जा रही है, और स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसके अलावा हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तसल्ली रखिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप फेस वॉश का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सिर्फ फेस वॉश हणदा आहियूं, तो काई मसले जी गाल कोने का, तव्हां फेस वॉश लगाए सघो था। ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अगर गाल कई वञे तो खूबसूरती और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि आपके दिन का आगाज एक अच्छी स्किन केयर रूटीन के साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हमारी जल्द जो होती है ना, दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, पसीना हो जाता है, या फिर ऑयल जो है वो काफी ज्यादा जमा हो जाता है, या फिर डस्ट पोल्यूशन वगैरह, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, इसलिए आपके चेहरे की सफाई
सफाई को अपनी रोजमर्रा रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके लिए आपके पास डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जो आपकी रोजाना स्किन केयर रूटीन में एक बेहतरीन इजाफा ला सकता है। चेहरे को साफ करने के बाद ज्यादा आपको जो है ना स्किन को फ्रेश बनाएगा, साफ सुथरा आपको महसूस होगा, जिससे आपकी पूरी ब्यूटी रूटीन मजीद बेहतर हो जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह हो, शाम हो या फिर रात के टाइम, तो लाजमी लगाइएगा और मुनासिब आपके चेहरे को जो है ना वो बेहतर बना देगा, फिर जल्द को देगा ताजगी। और जब फेस वॉश यूज करने के बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब तो भाई पार्टी बन जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन ब्यूटी क्रीम दोनों चीजें साथ लगाइए। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्लीन बनाता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। तो डी स्किन फेस वॉश मार्केट में इन हो चुका है, जाइए लूट लो माल बाबा, परचेज करते जाइए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते जाइए। उसके लिए आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। नंबर आहे बड़ी 312 5025 970। ही नंबर अगर बंद हो जाए, रिसीव न थे, तो पोई तमाम बियो नंबर ट्राई करे सको था। आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09। बड़ी 332 73-84-309। ही नंबर साइन तमाम जी आसानी जी लाए, जी तमाम वन्यो बस पांजे करीबी जनरल स्टोर से नालो वठी तलब कयो, आई पांजे खूबसूरती के जो एकड़ो नो एहसास तो हाणी मार्केट में अवेलेबल आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश। हाँ बुधायो करें था इस्तेमाल कयो। अच्छा अगर तमाम भी इस्तेमाल कयो पया तो मुखे बुधायो, जी अब्दुल्ला भाई बुधायो, तो बाबा असानी पूरी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे रही आहे, अगर तमाम लगायो था या तमाम जी फैमिली मां कोई लगाए पयो तो मुखे बुधाईंदा कयो, जी मुखे खबर पए किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज थे पयो बाबा। उन खां अलावा अगर तां असां जे प्रोग्राम में मौजूद आहे त तव्हां असांखे 888 और फेसबुक ते ज्वाइन करे सघो था। फेसबुक ते जेके माण्हू असां सां गॾु मौजूद आहिनि सभिनी जो मोहबतूं बाबा, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, पैसा कोन लॻंदा, मुफ़्त में थी वेंदो। मां जवां खां सवाल पुछियो आहे, मूंखे ॿुधायो अगरि फर्ज़ कयो पैसनि जो मींहुं वसे, ठीकु आहे, त तव्हां केतिरा पैसा हुन मींहुं मां खणंदा? हां जी, छो त इंसान ॾाढो माशाला लालची आहे। अगर असांखे मतिलब मिली वेंदी आहे न हिकिड़ी चीज़, जेका असां चवंदा आहियूं काफ़ी टाइम खां असां सोचींदा त बाबा हीअ चीज़ असांखे मिले, ऐं जॾहिं उहा चीज़ असांखे मिली वेंदी आहे उन खां पोइ वरी असांखे अञा वॾी चीज़ जी जेको आहे न मतिलब ख़्वाहिश पैदा थी वेंदी आहे। सो वाखे इंसान हिकु त नाशुक्रो आहे, ॾाढो लालची आहे। सथा ॿुधायो पंहिंजी ॻाल्हि कयो। अच्छा हीउ गानो हलायो आहे मुमताज़ मलई जी आवाज़ में, फरमाइश हुई बाबा कंहिंजी, मुमताज़ मलई जो गानो वठो, मुमताज़ मलई आयो अथव आवाज़ जो भलो गानो ॻाईंदो। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

चाचो पुछे पियो माइक्रोबीट्स क्या है बेटा। माइक्रोबीट्स फेशियल जे अंदर एड कया वेंदा आहिनि जीअं उन फेशियल खे सफ़ा भली जेको आहे न रिज़ल्ट जे लाइ तयारु कयो वञे। ऐं माइक्रोबीट्स जेका हूंदा आहिनि उहे तव्हां जॾहिं वीडियो ॾिसंदा फेसबुक ते जेका हले पई त जेके ही गोल्डन कलर जा बीट्स आहिनि उन्हनि खे माइक्रोबीट्स चइबो आहे। ठीकु आहे, उहे तव्हांजी प्रोडक्ट जी जेका मतिलब रिज़ल्ट हूंदा आहिनि उहा डबल ट्रिपल करे छॾींदा आहिनि। सो इहे ॾाढा पावरफुल हूंदा आहिनि। इन्हनि जो इस्तेमालु जेको आहे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ ॿ या टे प्रोडक्ट कनि पिया जंहिंमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि शामिल आहे। सो प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, वञो बाबा वठी अचो। और फहीम कहते हैं कि टॉपिक दादा मैं इतने पैसे उठाऊंगा जितने पैसों से मैं एक बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा और लाड़काना के सारे चिंची ड्राइवरों को चिंची छीन कर उनको फैक्ट्री में काम दूंगा। इो भलो आ, इो सुठो मस्त आइडिया। और उनका अलावा

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं सिद्रा, अब आपने हानिया आमिर का सॉन्ग सुना, मुझे तो मजा नहीं दे रहा था, बस पता नहीं क्या था के अलावा साजिद भाई कहते हैं दोस्त मोहम्मद ताबिश भुट्टो, मोहम्मद बाकिर और शाकिर भुट्टो गाने जामिन जो गानो, अच्छा चलो जामिन जो गानो तव्हां चयो आहे, मां कोशिशि कयां थी बिल्कुलु हलाईंदासीं। दर्दी दिल कहती है ये नाइस बीजी है, थैंक यू दर्दी दिल। और हुन खां अलावा चाचू चए थो नंढपण में त अञा अवां बि आयो बेटा, हा मुंहिंजो अञा बचपन हले थो, सही ॻाल्हि आहे। और मुजाहिद बोज़ा लिखते हैं कि सिडो सिंधी में बात करती हो, उर्दू में बात करती हो, थोरा बलोची बि बोला करो, मां ठाही वज़ी सिद्रा मुस्कान इंगू बि आहे।

अच्छा सदाम अली हमें सुन रहे हैं। सदाम अली भाई आपको भी खुश आमदीद हो गया। फैसल अहमदानी हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम फैसल कहते हैं। बेशर आबाद मोरी खां फैसल अहमदानी थैंक यू जी थैंक यू वेलकम कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया के साथ। असा के भी याद करो बिल्कुल भाजू मोहब्बत हुए था प्रोग्राम बुध पया। नसीम भा कहते हैं हमारा गाना नहीं प्ले करती कहानी सुनो जुबानी सुनो। माँ कोशिश क्या थी गानों हलाना जी।

जो डीस कंप्यूटर क्रीम केर के लगाए पे हथ माथे के बाबा डिसन चाया थी जगह सोना मानू वेठा ना सने प्रोग्राम में डीस कंप्यूटर क्रीम जो इस्तेमाल कन पया पोस्ट के लाइक शेयर कयो कंजूस इन छाजू आयन बाबा किशोर भाई कहते के मुखे तुझे शो जी हिकड़ी गाल वणंदी हुई तो कमेंट फौरन रीड कंदो होए अगर असा के गाने जी मश्करी कंदा हुआ सी तो उन टाइम रीड कंदो होए तो मजो इंदो हो हां तारीफ हन गाने जी मिले लास्ट में गाने के तो मजो नहीं इंदो ना यहां भी गाल है वैसे सही गाल है सही था चो कहते हैं कि जे मानो जा कमेंट मुखे नजर न था अचन ता चुप करे प्रोग्राम दो बाबा चा के ना मानो जे कमेंट्स के ओए मां हुई पढ़ा थी तो ता बस बुधी बैठो ठीक है देसो नजर बुधो ॾिसो तव्हां सिर्फ़ पंहिंजो हुसन पंहिंजे आईने में जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि अची वियो आहे मार्केट में सो तव्हां हाणे फेस वॉश बि वठी सघो था ऐं फेस वॉश अगरि तव्हांजे एरिया में नथो मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहिरियां खां अवेलेबल आहे त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो आहे प्रोग्राम में उन नंबर ते राबितो करे वठो ठीकु आहे जो तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश ॿई मिलनि गुलाम फातिमा हमें सुन रही हैं गुलाम फातिमा चन्ना बिल्किस चन्ना अब्दुल कदीर चन्ना कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया जी रोजाना हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं थैंक यू प्रोग्राम को सुनते रहिए और आपके कुरेशी गोट सखर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बताइए तो जरा खबर पवे बाबा नबी मिले थी अगर तो नंबर प्रोग्राम में बुधायो वे तो ना उन नंबर से राबो करे वा एक दफो कॉल या फिर मैसेज छी वो पा ही तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराए छींदा हांजी वार चई वरी बार चई सिर्फ मुझे ही सुनने को मिलता है या फिर आपको भी ऐसा लगता है अच्छा नसीम गुलाम दीन भाई कहते हैं कि हमने वैसे क्रीम कभी यूज नहीं की लेकिन आपने बोला हमने यूज की डी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम अब दिल करता है क्रीम को छोड़ू ही नहीं दिसो इहो कमाल अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अगर तव्हां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त पोइ बिल्कुल ई नसीम भाई वांगे चवंदा त हाणे असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कोन छॾे सघंदासीं छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढी भली क्रीम आहे

जी छा था ॿुधो संगत नाज जो गानो आहे तू ई मूंखे प्यारो सभ खां बाकी ॿियो कुझु न आहे घुरियो रब खां अलाए ईअं ई हुयो शायदि पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञो बाबा दुकानदार खां घुरोसि हिनखे चओसि अदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए अगरि नथी मिले त ईअं बि थींदो आहे दुकानदार वटि तव्हां वेंदा दुकानदार खे चवंदा अदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे हू अगरि न हूंदी हुन वटि त का ॿी क्रीम तव्हांखे ॾेई छॾींदो ऐं चूनो लॻाईंदो त बाबा हीउ हले वठी अॼुकल्ह ॾाढो भलो रिज़ल्ट अथव हे हो तव्हां हुनखे चओ भाउ हाणे ॻाल्हि अथई सिधी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए पोइ वठणु ईंदो मां बाक़ी ॿी क्रीम कोन वठी वेंदो मां सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो ई काफ़ी आहे बाबा भई असां बि ॿार ॿार चई थकिजी पियासीं एतिरो मतिलबु हिन में बार बार लॻे पियो वाक़ई ऐं छा छा कहिते की तव्हांजा हुकुम हलंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा बंडल ख़रीद कंदासीं कयो बाबा ईअं कयो ईअं सफ़ा ईअं गोदाम खाली कयो

आसिफ भाई कहते हैं दी स्किन ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश नूरिया बाद में दस्तियाब है या नहीं, ये तो आप नंबर के ऊपर राता करके उनसे मालूमात लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश नूरिया बाद में मिल रहा है या नहीं। तो वहां पर भी आप अवेलेबल करा सकते हैं, जल्दी से अवेलेबल कराए, नूरिया बाद के सारे लोग आप यूज कीजिए, ठीक है।

अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं वैसे गर्मी बहुत है, पानी वाला मी वैसे तभी शुक्र करूंगा मैं। या भी गाला है वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है भाई, आपको वेलकम कहते हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा दर्दीतुल कहते हैं टॉपिक कोई हिसाब नहीं, सोच रही हूँ लंदन का वीजा जितना। अच्छा अच्छा दोनों जाएंगे कहती है, लेकिन फिर ये भी है कि पैसों की बारिश कौन करेगा। तो गाना ना बुद्धू थी मैं बारिश कर दू पैसे की। शायद वही कर ले। और अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया अलीजा। और साकिब अली भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं मायरा हूँ। अच्छा मायरा हमारे साथ है, कैसी हो, शो आपका नाइस है, मैं आपका शो बहुत इंजॉय करती हूँ, थैंक यू वेरी मच मायरा। अच्छा ये ओपी मिल हमारे साथ है, ओपी मिल वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम हो गया।

0: मुगे प्यारो सब खां बाबा गाल तई सिद्धी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइण वारा माण्हू सोणा थी विया आहिनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं छा था चओ हाय मुंहिंजी हुसन जी छा ॻाल्हि आहे आऊं छा ॻाल्हि कयां जॾहिं खां डी स्किन जे प्रोग्राम में आयो आहियां आसूं टपकी वई प्रोग्राम में अचण सां सूंहं टपकी पई वाह साईं वाह इस्तेमालु कंदा त पोइ सोटो किथे कमु पहुचंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसजो सोणा सोणा थी वेंदा उफट मरी वेंदासीं जाइ ॿुधा वेठा हुजो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वापसी जल्दी मोटी अचां थी तव्हां करे न वञो हिते वेठा हुजो सफ़ा हिते जाते वेठा आहियो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हैं बाबा जाइए और जरा खर्चे कीजिए अपने ताकि खूबसूरत हो जाए
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Agar Khubsurti Chahiye. सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत व जवाबित लागू

0: जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003
0: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94
1: ब्यूटी क्रीम असली ग्लो

ओके जी ओके, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही जनाब जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप भी स्किन को अच्छा सा एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वैसे भी कभी कभार अपनी स्किन केयर करना, अपनी स्किन के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, ये एक बहुत ही अच्छी सी बात होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप तरह तरह के जो प्रोडक्ट लगाकर बड़े बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं और आपकी स्किन भी खराब हो चुकी है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर एक वाज़े नताएं जो है ना वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई जान बात में दम तो था। चंद्रा भाजी जो बताती है वो बिल्कुल सही बताती है। तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए, खूबसूरतियों का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे। अच्छा, ऐसा फर्ज कर लीजिए कि अगर नहीं भी अवेलेबल हुए अभी तक, तो उसके लिए आपको नंबर्स बता रही हूँ, उनके ऊपर आप रابطہ कर लिया करें। नंबर्स को लाजमी डायल कर लें, नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से अवेलेबल कराएंगे या फिर कहाँ अवेलेबल होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, ये तमाम बातें जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं आराम से। तो मैसेज कीजिए या फिर उन्हें कॉल कीजिए और बताइए आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, या फिर अगर डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो जल्दी से डायल कीजिए 0332738439 बुड़ी 3383 84 309 एमयू नंबर आहे 0312502509 07 बुड़ी 312 50 25 970।

भाई मोर ॾाढो भलो नालो आहे। ओके जी, हुसन में भी जोर रहा वरी मोर भी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले नंबर के ऊपर राता कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मिरपुर खासी अब्दुल्ला महर के दिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बड़ी जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और ये हमारे साथ शहजाद अली राजपर, अनंडो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो अदी सिद्रा पेसन जी बारिश अच्छे पो मजा डिस जा सांझा ये नमाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मकसूद मला कहते मेरापुर खां, हेलो सिद्रा मुस्कान। हाँ जी, मुझे मास्टर मजूर का गाना सुनाना। अच्छा तव्हां थोरो लेट आया आहियो, पर शायदि मां तव्हांजो मैसेज लेट पढ़ियो आहे। ॾिसां थी अगरि टाइम बची वियो त तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाए वठूं था, ठीकु आहे? न त सुभाणे ॿुधी वठंदासीं। और ये हमारे साथ ही आपकी पूरे नेटवर्क को सलाम क़बूल हो, शुक्रिया। 78 मोरी मीरपुर खास से राजा हमीरचंद हैं, किशोर कुमार, हीरा लाल, सुरेश और सुरेश ईजी लोड वालो, सही सही। और अतिका क्यानी का मरवाड़ी छा था चो। अच्छा तव्हां मरवाड़ी में मैसेज लिखियो आहे, बाबा एतिरी मूंखे न ईंदी आहे जेतिरो तव्हां मैसेज में लिखियो आहे। सो थैंक यू, तव्हांजो मोहबत आहे तव्हां प्रोग्राम।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो। यहाँ पर फजली हमारे साथ मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। सॉन्ग अच्छे प्ले करो जानू, नो सैड, ओके ओके, सैड गाने नहीं लगाएंगे आगे से, ऐसा भी हो वचन वर्तु। और कहती है चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रहिएगा।

अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाव यो राणल जो धूल केड़ो आए हाँ राणल का पुछणो पवंदो मुखा छा था पुछो मां न राणल के सुणाणे न धूल के सुणाणे और अदो कहते हैं कि ही गानो आ बचपन का शादन में बुधा पे बाबा पुराणो गानो आहे अई सब बचपन का बुधंदा अचन था कहते वैसे भैया आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगानी चाहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा ठीक है। और अखलाक भाई कहते हैं कि इयो केंजी शादी जो सेरो वा इयो बाबा बस शादी केंजी भी कोनी असा मड़े यो हलाई छडियो है वैसे फरमाश ने गाने जी हुई सो ये उना देखे डेडिकेट आए पर ये मड़े बुझूंदा शादी कोने का छड़ा जेके छोकरा हूंदा ना वैसे ही चवंदा शादी करो गानो हला मतलब हू चवंदा आहिनि कॾहिं त थींदी सो असां फील वठी वेठो मायरा कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपने यूज करी और आपको बड़ी अच्छी लगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या बात है जी बहुत बढ़िया डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी यही कहेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेड़ो कोई भी कोने बाबा छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम है यानी कि ही नाइट क्रीम था पर ही जदी तां इस्तेमाल कंदा त तव्हां खे फेशियल वारो रिजल्ट मिली सके थो सो अगर तव्हां भी चाहियो था त बाबा पैसा भी लाइ खर्च न थियनि ऐं असां खे मुनासिब क़ीमतनि में भलो प्रोडक्ट मिली वञे असांजो टाइम भी बची वञे त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सफा परफेक्ट प्रोडक्ट आहे तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ ऐं तव्हांजी स्किन खे सफ़ा वीआईपी बणाए छॾींदो तव्हांजे चहिरे जे जेके प्रॉब्लम्स आहिनि सभिनी खे ख़तम कंदो ऐं तव्हां गोरा चिटा प्यारा प्यारा थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे डी स्किन फेस वॉश आहे तव्हांजी स्किन खे अगरि पंहिंजी खूबसूरती ॾियण चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश पंहिंजे चहिरे खे गिफ्ट करे छॾियो हांजी अगरि आप अपने लिए कुझु अच्छा करणु चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अपने आप को ज़रा गिफ्ट कीजिए हांजी कॾहिं कॾहिं पंहिंजो पाण खे तोहफ़ो ॾियण बि ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे वरी अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश पाण खे तोहफ़ो ॾिजे त पोइ त बाबा वाह वाह थी वेंदी अच्छा हज़ार बार चयो कोई पंहिंजे पसंदि जो AI वारो गानो ॿुधायो त हीउ वारो गानो अचो त ॿुधूं था

नांगर शहर हमें गोरकी से सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा कॉपी वालों गानों बुद्धों से जो तुझा बार बार कॉपी हुए ना उन्हें ते होका बार बार कॉपी वालों गानों ना लाए थे सके तो। अच्छा हजार भाई थैंक यू सो मच तुम से गड आए और फरवा तुम्हें जो प्रोग्राम पसंद आए सो थैंक यू

नाचे रे, आंधे तेरे प्यार में दिल ये नाचे रे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो रही है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार की बात हो रही है। स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, और इसके अलावा पोस्ट को लाइक और शेयर करें। हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि भाई मोहब्बतें बढ़ती है, और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से निभाई जाती है। तो अगर मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताती हूँ तो आप बदले में पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है।

राधो जी, तो आजकल लोग हमें पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। लगे ये तो सोड़ो जमाना जो है ना थोड़ा उबतो थी वही हुआ है। पहले जो चीजें सीधी होती थी अब वो उल्टी है। ॾिसो असां सोचो से या एॾा भला भला गाना ॻाईंदो पर ईअं थी वियो आहे। अख़लाक भाई बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। चाचा तव्हांजो गानो आहे लिस्ट में, बाबा पंध में आहे, ॼाण आयो, सबर कयो सबर।

बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अखलाक भाई, कहते हैं डी स्किन जो यू तव्हां खे जेको नंबर ॿुधाए थी न उन नंबर तव्हां तव्हां मालूमात वठी सघो था, ठीकु आहे? सो नंबर जेको ॿुधायो तव्हांखे प्रोग्राम में उन नंबर ते तव्हां कॉल या वरी मैसेज करे छॾींदा कयो। आपको सारी वो मालूमात मिल जाएगी जो शायद आपको मुझसे नहीं मिल पाते। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए, ठीक है? अच्छा हबीबुल्ला तेबू भाई, आपको वेलकम हो गया, आप प्रोग्राम में मौजूद हैं।

ओके तो क्या बात है बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगी वो खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं मिलते तो जो आपको नंबर बताया प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिएगा, और उसके बाद जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे तो आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब समझी जाऊँ ना छाती चवा।

अच्छा खूबसूरती त हर कोई चवंदो आहे न त असांखे मिले ज्यादा ज्यादा खूबसूरती मिले त तव्हां ज्यादा ज्यादा खूबसूरती हासिल करण चाहियो था त ॿिया प्रोडक्ट अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त हुननि खे गुड बाई टाटा चओ हाणे छो त हाणे मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी की अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी जेका खूबसूरती आहे न उहा सेफ बि रहंदी ऐं तव्हांजे हुस्न में इज़ाफ़ो बि ईंदो रहंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बेफ़िक्र थी करे लॻाए सघो था इस्तेमालु कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो।

बाबा असांजो बि हाणे चङो हाणे ख़ुदा हाफ़िज़ अथव. वरी तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थिए पई 5 बजे वारे प्रोग्राम में. अच्छा फहीम, हिते लास्ट में ॻाल्हि कई दादा, ऐसा तो नहीं होगा कि हम क्रीम लॻाए तो खूबसूरत हो जाए, जब क्रीम छोड़े तो पहले जैसे हो जाए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां बिल्कुल भी ईअं कोई बि मसलो न थींदो. अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया त जेका खूबसूरती तव्हांखे मिली वई आहे उहा सिर्फ़ तव्हांजी हूंदी, तव्हां खां कोई बि वापसि नथो वठी सघे. तव्हां चाहे प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो या न कयो, ठीकु आहे. सो इस्तेमालु करे ॾिसो, जेको हुसन तव्हांखे मिलंदो उहो तव्हांजो हूंदो. बाबा दिलि जाए कयो, अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का. सो बेफ़िक्र थी करे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो. ऐं उन खां अलावा वरी मिलूं था 5 बजे वारे प्रोग्राम में. चङो हाणे अला हाफ़िज़. मोकिलाणी नाहे बाबू, सन सलामत, सा सलाम. पंहिंजो एॾो सॼो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी वई त माज़रत कयूं था बाबा, ठीकु आहे. जिना फीडबैक रहिजी विया, गाना रहिजी विया, सभिनी खां माज़रत. सो अला हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बदरा हुकुम जारी कयो आइन जी तशरीह जो भी इख्तियार हाणे वफ़ाकी आइनी अदालत वटि आहे. जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अर्तवा हेठ केस फौजदारी नोट जो आहे. असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले ख़िलाफ़ आयो आहे. जस्टिस अली बाकिर चयो आहे त सवाल हीउ आहे त हाणे आइन जी तशरीह ऐं बुनियादी हक़नि वारे केस केरु ॿुधी सघे थो. वज़ीर-ए-आज़म मुल्की बरामदे अमल खे वधीक आसान, तेज़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी. बरामदाती सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मुल्की बरामदात वधाइण ऐं मुआशी तरक़ीअ खे तेज़ करण बाबति इजलास. शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे बरामदात में वाद खे मुल्की मुआशी तरक़ीअ जो बुनियादु बणायो वञे. रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडीअ में बरामदात लाइ तयारु कयो वञे. रंडकूं ख़तम कयूं वञनि. अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी. 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़. 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो. ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयारु कयल रिपोर्ट जारी. रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहालीअ में रंडकूं आहिनि. हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो. ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, उमान ऐं उर्दन में बि मौजूदा अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे. जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे. तेल ऐं आबनारम जी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे. ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं. ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी सदर कॾहिं चवे थो त ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयारु हुजण जा बयान ॾिए थो. संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे. लबनानी घरो वज़ीर जे घरो वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात. ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं. ॿिन्ही अॻवाननि जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़. लबनानी घरो वज़ीर खे घरो वज़ारती आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई. आइन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि. इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आइन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे. वफ़ाक़ी आइनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन ख़ान तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आइनी ते अमल करण खे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे सघिजे थो. नए अदालती साल में इंसाफ़ जी फ़राहमी वारो अज़म वरजायूं था. सिंध हुकूमत पारां लाड़काणो शहादत कोट ऐं कंबर में 18 सेप्टेम्बर लाइ पीपल्स बस सर्विस जा नवां रूट शुरू करण जो ऐलान. सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमण जी सदारत ते ट्रांसपोर्ट ऐं मास ट्रांज़िट बाबति इजलास. मीरपुर ख़ास में औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी जी विर्च बाबति अगभराई जो बि जाइज़ो वरितो वियो. शर्जील नामेमण चयो आहे त हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं महफ़ूज़ ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ क़दम खणी रही आहे. पीपल्स बस सर्विस खे सिंध जे ॿियनि शहरनि ऐं ज़िलनि ताईं वधायो पियो वञे. कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में प्लाटनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट वारे केस जी अस्थिरता एहतसाब अदालत में ॿुधणी. वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया पेश न थिया. एहतसाब अदालत वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया. समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो. नौशेरो फिरोज़ जी अदालत में मोरो में सरकारी प्लाट जे विकिरे वारे केस जी ॿुधणी. अॻोणो वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश. वकीलनि जा दलील ॿुधण बाद अदालत ॿुधणी 13 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी. मुर्तज़ा जतोई चयो त सियासी केस आहे, इंसाफ़ जी उमीद आहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: असली चीजां चारों मसालों जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा. जी जान चारों मसालो ढोर जो हाजमो दुरुस्त. जी जान चारों मसालो ढोर सेहतमंद. जी जान चारों मसालो. जी जान चारों मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो.
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
4: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03000338569।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा
3: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8051।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की बरामदी अमल के वधीक आसान तेज ए शफाफ बनाने की हिदायत करे छड़ी बरामदती सनातन ला जदीद टेक्नोलॉजी तहकीक ए जिदत के हथी देने जो हुकुम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत हेठ मुल्की बरामद वधाइण ए मुआशी तरक्की के तेज करण बाबत इजलास शहबाज शरीफ चयो त बरामद में वाद के मुल्की मईशत तरक्की जो बुनियाद बणायो वञे रवायती शोबन सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडीअ में बरामद लाइ तयार कयो वञे रंडकूं ख़तम कई वञनि
4: अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारिजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़ 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़ख़ीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयारु कयल रिपोर्ट जारी रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़ख़ीरे में घटिताई थी आहे जंहिंजी बहालीअ में रंडकूं आहिनि हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब कुवैत बहरीन यूएई इराक उमान ऐं उर्दन में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे
3: तेल ऐं आबनाए अरम जी सूरताल हाणे तब्दील थी चुकी आहे ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾिए थो संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे
4: पिमसाने में इंतज़ामी गफ़लत साबित बिजलीअ में ख़राबी बाहि जो कारण करार पिमसाने जी जांच लाइ वज़ीर-ए-आज़म पारां जोड़ियल कमेटी जी रिपोर्ट चयो वियो आहे त ॿ नंबर एसीअ जी सप्लाई लाइन मां बाहि लॻण जा इम्कान वधीक आहिनि बाहि कंहिं तकरीबकारी या इनक्यूबेटर सां लॻण जो इम्कान नाहे नर्सरीअ में दूहे ते वॼंदड़ अलार्म बि मौजूदु न हो ॿार हिफ़ाज़ती निज़ाम जी नाकामी सबबि फोत थिया 10 बेडनि ते बदल वार्ड में 15 ॿार इलाज हेठि हुया अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश
3: आईन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आईन ते अमल करे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे
4: सघंदर खां पीपल्स बस सर्विस जा नवां रूट जे विर्च बाबति अकबराई हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं महफ़ूज़ ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ क़दम खणी रही आहे पीपल्स बस सर्विस खे सिंध जे ॿियनि शहरनि ऐं ज़िलनि ताईं वधायो थो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर किड्स

0: जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहराब पर 03003385 69।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरन खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हीअ चारो ढोरन जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थियन था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइन, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए दो दिन डार्क स्पॉट्स को करें फेक स्किन ब्यूटी क्रीम। असली ग्लो हर दिन।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मंजूर हुसैन मेमन एम।

0: नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुथरी 07-3592120।
1: खुश्क आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिकर छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरीपुर 03-00-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा फोरी हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, दुकान बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान
3: जी मुबारक सिम जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्द जी एड्रेस तो बुदा।
4: 54 नई कॉलेज दुरमन में 380 44।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ जीए।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

फिर मुसद्दिक मलिक चयो आहे त अवाम खे पेट्रोल जी फी लीटर ते 100 रुपयनि जे रिलीफ सां कुझु सहूलियत मिलंदी, वधीक कदम बि खणी रहिया आहियूं। वफ़ाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट मां पीटीआई बानी वारे केस जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। हाई कोर्ट्स खे बि साॻी ॾोहीअत वारनि केसनि जो रिकॉर्ड मोकिलण जो हुकुम। वफ़ाकी आईनी अदालत कैदियुनि जी निजी अस्पताल में इलाज वारी दरख़्वास्त ॿुधणी कई। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे पीटीआई बानी केस जो रिकॉर्ड तलब करण जी सदा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान चयो त दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब ग़रीब ऐं अमीर लाइ आइन ऐं कानून हिकु जहिड़ो हुजणु घुर्जे। जस्टिस अली बाकर नजफी अटॉर्नी जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त छा अवां सुप्रीम कोर्ट में एतिराज़ वारियो हो। अटॉर्नी जनरल जवाब ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो। आइन जी तशरी जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाकी आइनी अदालत वटि आहे। जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में उल्तवा हेठि केस फौजदारी नोयत जो आहे। असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ आयो आहे। जस्टिस अली बाकर रजवी चयो त सवाल ही आहे त हाणे आइन जी तशरी ऐं बुनियादी हक़नि वारा केस केरु ॿुधी सघे थो। वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल खे वधीक आसान, तेज़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदादी सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुल्की बरामदाद वधाइण ऐं मुआशी तरक़ी खे तेज़ करण बाबति इजलास। शहबाज़ शरीफ चयो त बरामदाद में वाध खे मुल्की मुआशी तरक़ी जो बुनियाद बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडी में बरामदाद लाइ तयारु कयो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि। अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फ़ौजियुनि खे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़, 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयारु कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूदु अमरीकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। सऊदी अरब जो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र पहुची वियो। मिस्री सदर अलसीसी मोहम्मद बिन सलमान जो एयरपोर्ट ते आदर भाव कयो। ॿिन्ही अॻवाणनि में ॻाल्हि ॿोल्हि कई वई। मोहम्मद बिन सलमान मिस्र रवानगी खां पहिरीं काबीना खे बि एतमाद में वरितो हो। तेल ऐं आपने हरमूस जी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयारु हुजण जा बयान ॾिए थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे। पिमज़साने में इंतज़ामी ग़फ़लत साबित, बिजली में ख़राबी बाहि जो कारण करार। पिमज़साने जी जांच लाइ वज़ीर आज़म पारां जोड़ियल कमेटी जी रिपोर्ट चयो आहे त 2 नंबर एसी जी सप्लाई लाइन मां बाहि लॻण जा इम्कान वधीक आहिनि। बाहि कंहिं तकरीबकारी या इनक्यूबेटर मां लॻण जो इम्कान नाहे। नर्सरी में दूहे ते वॼंदड़ अलार्म बि मौजूदु न हो। ॿार हिफ़ाज़ती निज़ाम जी नाकामी सां 10 बेडनि में 15 ॿार इलाज हेठि हुआ। अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश। आइन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि। इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आइन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफ़ाकी आइनी अदालत जी चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त आइन ते अमल करे माशरे में इस्तेकाम आणे सघिजे थो। नई अदालती साल में इंसाफ़ जी फ़राहमी वारो अज़म वरजायूं था। कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में प्लाटनि जे ग़ैर क़ानूनी अलाटमेंट वारे केस जे एहतसाब अदालत ॿुधणी वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया पेश न थिया। एहतसाब अदालत वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो। नओं देरो भरिसां पुराणी तकरार तां हाज़िरी ते वीदड़ भॼणा क़तल। सिमशाख वटि पुराणी तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे सईद कड़ियो ऐं हाकिम कड़ियो खे क़तल कयो। पुलिस मूजिबि वाकियो
कड़ियो खुरूस ऐं खोखर बरादरी जी धुरियुनि में हलंदड़ पुराणी तकरार तां पेश आयो आहे। वधीक जांच जारी आहे।

0: कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर के धमकियूं ॾियण वारे केस में कोनेन शाह जी ज़मानत मंज़ूर। मलीर जी अदालत में प्रोफेसर आरिफ साकी खे धमकियूं ॾियण वारे केस जी ॿुधणी थी। अदालत जवाबदार कोनेन शाह जी ज़मानत मंज़ूर कंदे 20,000 रुपियनि जा मचलका जमा करण जो हुकुम ॾिनो। चक भरिसां हथियारबंदनि हथां बंदारियूं बेना तौर अगवा, वारिसनि जो बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। ॻोठ ट्रिप चावरी जे रहवासियुनि नारी कुलसूम ऐं नाहिद चावरी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कयो। वारिसनि चयो त बिरादरी जा हथियारबंद ॿिन्ही औरतुनि खे अगवा करे ज़बरदस्ती निकाह मथां निकाह कराए छॾियो आहे, खेनि बाज़ियाब करायो वञे। पुनरी में ज़हरीली लस्सी पीअण सबबि ॿारनि समेत नव घर भातियुनि जी हालति ख़राब। इस्पताल मुंतकिल नबीसर में चांवरनि सां गॾु लस्सी पीअण सबबि 7 ॿारनि समेत 9 घर भाती बेहोश थिया। क़ीमत
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। वे जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कीड़े करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धो, राइज चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मलिक जफर इकबाल 0051 0300 310 51051।
2: सिर्फ पाकिस्तान का पहला एंड गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 तक की मुद्दत, इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंस को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1175265islami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू है।
1: रोशनी का काफिला, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एकेडमिक ब्लॉक, मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसा नेचर, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब्स, ऑडियो और हुलत, बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खसूसी टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, प्यारे बेटों की तरबियत के सिस्टम मेहरापुर के लिए डॉक्टर सैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0000272341, प्रिंसिपल मजहर स्कूल 6543।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज. मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे. इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं. नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में. एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें. दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम. हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें. मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 03000 310 5109.
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर आई गोश्त बधाए, अम्हा के खुशहाल बनाए. हर पंसार आई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाबा है.
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई.
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी.
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100.
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो. इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003.

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MADS, MS सिंध, RHMP इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन, माहिर अमराज गुर्दे पत्ते ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू, मथे जो सूर अध मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर घट बुधण में अचण, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फॉलिज, खंग, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस बीसी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सावरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, औरतन में कद जो न वधण, औरतन मदन जे मर्दन जे पोशीदा बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने थो। टाइम हर अरबा ए खमीस ते सुबह 10 खां 4 वगे खां तई, जर्मन हर खमीस खां सुबह 10 खां वठी शाम 5 वगे तई।
1: दोस्तों के टाइम टेबल बुधाईंदा हलूँ तो डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर ते सुबह जो 10 खां शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपुरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। फ्रॉम माय सेहत जी गाल जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज समाज समातुन ते पहुंचे पे। असन जे स्टूडियो में मौजूद सिंध जा मशहूर मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब जैसा असा गाल बोल करियूं था। सब का पहिरियां असा डॉक्टर साहब के खुशामदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जो खास मेहरबानी आहिन, मोहब्बत आहिन, जो पंहिंजो कीमती वक्त कढ़ी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: डॉक्टर साहब ठीक आयो?
2: जैसे अल्लाह ताला जा एहसान।
1: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा, पर इन खां पहिरियां आऊं दोस्तनि खे नंबर ॿुधाईंदो हलां लाइव कॉल जो 0301-2196-8151 ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल बि करे सघो था, कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था। त पहिरियां डॉक्टर साहब सां मुखातिबु थींदा। जी डॉक्टर साहब।
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہریاں تو تعریفوں ان رب پاک جو جو اساں کے جارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو۔ اساں جو پروگرام صحت جی گال اور خبر ہے تو ہر روز ان ٹائم تے نشر تھیندو ہے۔ اڑے طریقے سے اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک جے کہ مہراپور شہر میں موجود ہے، ایڈریس اواں کے نوٹ کرے نالو जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड। टाइमिंग असांजी सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। डेज़ असांजा जेके ॾींहं आहिनि विहण जा उहे आहिनि हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं। उनखां अलावा अंगारे जो ॾींहुं असांजी मोकल हूंदी आहे। बक़ाया ॿिया ॾींहं असां क्लिनिक ते मौजूदु आहियूं। सूमर अरबा खमीस बि क्लिनिक जा डेज़ आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि हुन में कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजी जे तव्हां शुरू में असांजो प्रोमो ॿुधंदा आहियो त हुन में जेके बि बीमारियूं आहिनि उन जे मुतालिक़ तव्हांखे आगाही ॾिनी हूंदी आहे। जंहिंमें बीमारियुनि में असां मादे जी बीमारी बि अव्हां ताईं डिस्कस कंदा आहियूं। न सिर्फ़ु डिस्कस कंदा आहियूं, जॾहिं उनजा पेशंट असां वटि क्लिनिक ते ईंदा आहिनि त पोइ उन्हनि जी ट्रीटमेंट बि कई वेंदी आहे। अलहमदिल्ला हू काफ़ी सारो हुन में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं असां वटि के अहिड़ा केसिस वधी वेंदा आहिनि, हर असां वटि तव्हां ॾिसंदो त ॿिए मां टियों शख़्स मादे जी बीमारियुनि में ई मुंतकिल हूंदो आहे ऐं असां वटि ईंदो आहे। ऐं जेको आहे सो उनजी जेकॾहिं असां वटि डायग्नोस करे ईंदो आहे त असां हुनखे मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करे ईंदा आहियूं, जंहिंमें हिकु टेस्ट जॾहिं पेशंट असांखे कुझु निशानियूं ॿुधाईंदो आहे तकलीफ़ जे हिसाब सां, त हिकु टेस्ट एच पैलोरी ज़रूरु कराईंदा आहियूं। एच पैलोरी इन जे करे कराईंदा आहियूं जॾहिं उहो पेशेंट ईंदो आहे मादे जी, त हर को दाह कंदो आहे, कंहिंखे जलन रहंदी आहे, कंहिंखे यानी एसिडिटी थींदी आहे, कंहिंखे छार वग़ैरह ईंदी आहे। पर कंहिं कंहिं पेशेंट अहिड़ा हूंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असांखे मानी खाइण सां ई जेको आहे सो पेट में सूरु पियो वञे, या जलन बि थिए थी, गॾो गॾु उल्टी बि अचे थी, कड़वाहट बि थिए थी, ऐं उन खां गॾो गॾु उहो अॻिते हली जेको
1: आहे मौज़ू खे जारी रखंदासीं। मुंहिंजो ख़्याल आहे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, पहिरियां उन दोस्त खे शामिलु कंदा हलूं। इन खां बाद में वरी कॉलनि जो सिलसिलो बि जारी रहंदो, पंहिंजो मौज़ू बि कॉलनि सां गॾु जारी रखंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: साईं। मुंहिंजो अकेर साहिब पियो ॻाल्हाए। भलीकार चऊं था। ज़हीर साहिबु ठीकु आहियो? छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां मुंहिंजा साईं?
3: मौके जी बीमारी आहे, मौको आहे।
1: अच्छा, पायल साईं। बिल्कुल इलाज मौजूद है डॉक्टर साहब वट भले हलिया अचो यो इलाज मुकमल मौजूद है तक ऑपरेशन कराने की जरूरत ना है छो जो जी मूँ ऑपरेशन कराइन था उन्होंने वरी थी वन था अलहमदिल्ला मशहूर डॉक्टर एक वो डॉक्टर तुम मौजूद है मेहरापुर शहर में तुम भले सुबह ही हलिया अचो रूबरू दिखारियस इलाज मौजूद है इनशाला तक रिजल्ट मिलो पाँच एफ एम बुध डॉक्टर साहब वहाँ बुधाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है ऑपरेशन कराने से वरी थी था वन पा ते दवा डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब को
3: बी
1: जगह होंगे क्या लागो इलाज करा डॉक्टर मंजूर साहब का माशाल्लाह मशहूर डॉक्टर अव पूरी सिंध में परे परे जो पंजाब का बलोचिस्तान का मूल डॉक्टर साहब इंदा पा प्रोग्राम में बुधा होंद मू पा मैसेज दई सही असो मन रिजल्ट मिलो
2: खुशी भी थी असाजे अवाम में माशाला तमाम सुठो शऊर अची है यानी दिसो अस हर प्रोग्राम में अस खुद जैसे पेशेंट्स के या अवाम के बुधाइंदा त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जा केसिस थींदा आहिनि मिसलन पाइल्स आहे या मौका आहिनि मिसल बवासीर आहे त जॾहिं को बि ऑपरेशन डॉक्टर ॿुधाए थो ऐं माण्हू कराए था अचनि त वरी दुबारा थी वेंदा आहिनि लेकिन पोइ शायदि असांजी इन ॻाल्हि खे केरु सीरियस न वठंदो आहे या इतमाद न कंदो आहे पर इहा हक़ीक़त आहे जेकी अॼु ख़ुदा ते तव्हांखे जेको आहे सो पाण ॿुधाई ज़ाहिर आहे उन जे तजुर्बे जे अॼो को अज़ीज़ हुनजो को मिट माइट को अहिड़ो ऑपरेशन करायो हूंदो जंहिंखे वरी दुबारा थियो हूंदो तॾहिं हो छो जो हर ॻाल्हि केरु पंहिंजे तजुर्बे सां ई कंदो आहे असांजा बि जेके इहे दावा हूंदा आहिनि ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि या इलाज जेको कंदा आहियूं त पंहिंजे तजुर्बे सां ई ऐं पंहिंजी स्टडी सां ई कंदा आहियूं त इन जे करे अव्हांखे इहा ॻाल्हि वाक़ई जेको आहे सो हक़ीक़त आहे त जेको बि जेको आहे सो जेकॾहिं बवासीर जो ऑपरेशन कराए थो त हुनखे दुबारा थी वञनि था छो जो इहो जड़ हुनजी ख़तमु नथी थिए ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधाईंदा आहियूं त होम्योपैथिक उहा दवा आहे जेकी मर्ज़ खे जड़ खां वठी ख़ात्मो आणींदी आहे चाहे पोइ उहो बवासीर छो न हुजे चाहे स्टोन्स पथरियूं छो न हुजनि चाहे जेको आहे सो नक जी हॾी वधियल हुजे उनजो ऑपरेशन छो न हुजे चाहे कहिड़ो बि मर्ज़ु हुजे जॾहिं असां उनजो इलाजु कंदा आहियूं त उहो मर्ज़ु हा कुझु टाइम ज़ाहिर आहे त उनखे दवा इस्तेमालु करणी पवंदी आहे चारि महीना पंज महीना छह महीना कंहिंजो कंहिंजो जेको आहे सो मिसाल को ॾिसो कंहिंखे पुराणो दमो आहे पुराणी जोड़नि जी तकलीफ़ आहे पुराणी अमराज़ आहिनि हूअं जो मेडिकल जी दवा सारी ज़िंदगी खाए पर जेकॾहिं कुझु अरसो होम्योपैथिक दवा खाइबी त उन ऐं बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे हुनजा साइड इफ़ेक्ट आहिनि हिन जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे त उन सां पेशंट रिकवर न सिर्फ़ु रिकवर थींदो वेंदो आहे बल्कि गॾो गॾु तंदुरुस्त बि थींदो वेंदो आहे जी हा सो असां अचूं था पंहिंजे मौज़ू जे तरफ़ त मां ॻाल्हि पई कई त एच पायलोरी हिकिड़ो बैक्टीरिया हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में नंढी आंडे जे हिसे पहिरें हिसे में वञी वेही रहंदो आहे ऐं पोइ जेको आहे सो उन जे हुजण सां यानी उन उहो हिकिड़े क़िस्म जो दुश्मन हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में वेंदो आहे असांजे मादे खे डिस्टर्ब कंदो आहे ऐं पोइ जेको आहे सो उन जे करे जेकी मां तव्हांखे तकलीफ़ ॿुधाई त पेट मानी खाइण सां जेको पेट में सूरु पइजी ईंदो आहे कंहिंखे उल्टी थी वेंदी आहे कड़वाहट थी वेंदी आहे एसिडिटी थी वेंदी आहे जलन थी वेंदी आहे पोइ गॾो गॾु इहा जॾहिं तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त वरी मत जेको आहे सो वॾे आंडे में बि जेको आहे सो इहा जेको सो जरासीम अची वेंदो आहे जंहिंजे करे पोइ यानी हिकिड़े ॿ टिनि क़िस्मनि जूं शिकायतूं थींदियूं आहिनि मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई कंहिंखे मानी खाइण सां जल्दी सूरु पइजे कंहिंखे वरी ईअं थींदो आहे जो केरु मानी खाईंदो आहे कुझु टाइम खां ॿिनि टिनि कलाकनि खां पोइ हुनखे शदीद सूरु पवंदो आहे इहा बि जेको आहे सो हिकिड़ी ख़ासि अलामतूं आहिनि ऐं इहे जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त एच पायलोरी यानी हेलिको बैक्टीरिया वायरस आहे जंहिंखे घणा मज़ाक कंदा हेलीकॉप्टर वारी बीमारी बि चवंदा आहिनि लेकिन इहो हिकिड़ो जरासीम आहे हेलिको बैक्टीरिया जेको कंहिंखे बि थी सघे थो ऐं इन जे थियण सां जेको आहे सो पेशंट यानी सवली सिंधी में चऊं त मैदे जी अल्सर थी वेंदी आहे जंहिंजे करे पेशंट तकलीफ़ में अची वेंदो आहे अॻिते हली जॾहिं इहा तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त पोइ इन मां मैदे जो यानी अल्सर मां कैंसर बि थी सघे थी इन जे करे घणा इन खे सीरियस न वठंदा आहिनि ऐं असां वटि मशहूरु बसि हिकिड़ो कैप्सूल आहे जेको रोज़ु माण्हू राति जो खाईंदो
4: असां उहो कैप्सूल खाईंदासीं। अवां खे ख़बर आहे त इन अहिड़े क़िस्म जी दवाउनि जा साइड इफेक्ट्स केॾा ख़राब आहिनि। उहे कैप्सूल अॻिते हली पंहिंजी तव्हांजे जिस्म जूं जेकी हॾियूं हूंदियूं आहिनि उहे कमज़ोर करे छॾींदो आहे ऐं उहे भुरभुरियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ दुनिया जी का बि पेन किलर उनखे यानी फ़र्क़ु न ॾींदी आहे। उन सां अॻिते हली हुनजे अव्हांजी मर्दानगी ते असर पइजी वेंदो आहे, तव्हांजी जेको आहे सो ताक़त ख़तमु थी वेंदी आहे। लेकिन इहे साइड इफेक्ट्स आहिनि, कंहिंजी नज़र घटिजी वेंदी आहे, कंहिंजो को मसइलो थी वेंदो आहे। लेकिन हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां वटि इहो आहे त जल्दी असांखे फ़ाइदो पए, पोइ चाहे इंजेक्शन मां पए, चाहे ड्रिप मां पए, चाहे हज़ारे रुपया ख़र्चु करण सां पए, पर जल्दी पए ऐं आरज़ी छो न उहो आरज़ी फ़ाइदो हुजे। पर हिते जेकॾहिं असां मुकमल कंहिंखे कुझु टाइम ॾींदा आहियूं त हिते कुझु टाइम दवा माण्हू खाइण जे लाइ तयारु न हूंदा आहिनि, पर जेके पेशंट्स असां वटि अची चुका आहिनि ऐं कुझु टाइम जेको हुननि असांजे चवण ते दवाऊं खाधियूं आहिनि त उहे अहिड़े जेके मूज़ी अमराज़ आहिनि उन्हनि मां अलहमदिल्ला उन्हनि खे छुटकारो मिली चुको आहे। जंहिंजा व्यूज़ उहे ख़ुदि FM रेडियो ते लाइव बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं असां वटि क्लिनिक ते अची बि जेको आहे सो लाइव रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, जंहिंमां कुझु व्यूज़ आहिनि जेके अॼु बि अव्हां ताईं ॿुधाईंदासीं। लेकिन पहिरियां हिन बीमारी जे बारे में अव्हां ताईं इहा आगाही पहुचाईंदी त अहिड़े क़िस्म जी ख़तरनाक बीमारी आहे, उन जे करे जेको आहे सो तव्हांखे निंड बि न अची सघे थी, तव्हांजी जेको आहे सो बेचैनी थी सघे थी, तव्हां डिप्रेशन जा पेशंट थी सघो था, तव्हां रत जी कमी में अची सघो था, तव्हां कमज़ोरी में अची सघो था, तव्हां खोड़ सारी बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। इन जे करे इन जो होम्योपैथिक में तमामु कामयाबु इलाजु आहे ऐं इन खां रोकथाम जे लाइ अव्हांखे जल्द अज़ जल्द जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी अव्हांखे शिकायत थिए थी जेकी तव्हांखे ॿुधाई आहे त तमामु क़रीबी कंहिं सुठे गिस्ट्रोलॉजिस्ट वटि या होम्योपैथिक के सुठे फिज़िशियन खे ज़रूरु ॾेखारियो। इन जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं थींदियूं आहिनि, एच पैलोरी हिकिड़ी ब्लड टेस्ट थींदी आहे, लेकिन आउं सजेस्ट कंदो आहियां एच पैलोरी स्टूल जी टेस्ट जेकी हूंदी आहे, पाखाने जी जेकी टेस्ट हूंदी आहे, उन में एंटीजन मौजूदु हूंदो आहे ऐं उहो जरासीम नज़र अची वेंदो आहे। ऐं उन खां पोइ खोड़ सारियूं ॿियूं बि टेस्टूं आहिनि उन्हनि जी जेको आहे सो यानी जीअं हिकिड़े क़िस्म जी अव्हांखे सवली सिंधी में ॿुधायूं त कैमीरा यानी उनजी टेस्ट जहिड़ी थींदी आहे त कैमीरा आंडरे में वेंदी आहे ऐं उनजी पोइ मुकमल उन में ख़बर पवंदी आहे त उन में बि जेको आहे सो इहो जरासीम मौजूदु आहे या न आहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो इन जे करे। लेकिन एतिरनि वॾनि टेस्टनि खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे त की तव्हां सुठे डॉक्टर खे ॾेखारींदव त उन में अव्हांजो वक़्तु बि बचंदो, अव्हांजो पैसो बि बचंदो ऐं अव्हांखे जेको आहे सो जल्दी शिफ़ा बि थी वेंदी। अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे यानी मां जेकी बीमार टेस्ट जी ॻाल्हि बि कई त यानी घणा तव्हां एंडोस्कोपी ज़रूरु ॿुधो हूंदो, हिनखे एंडोस्कोपी चइबो आहे जेको जेको आहे सो टेस्ट कई वेंदी आहे। लेकिन इन्हनि टेस्टुनि खां इन टाइमिंग ख़राबु थियण खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे तव्हां असां वटि जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कॾहिं बि अचो। अहिड़े क़िस्म जी का बि तकलीफ़ आहे त अलहमदिल्ला हुन में बिल्कुलु शिफ़ाया बि थींदी। इन में पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखंदा कयो, कोशिशि कंदा कयो त छो जो बीमारी किथां ॿाहिरां कोन ईंदी आहे, पंहिंजे पेट जे रस्ते वात जे रस्ते वेंदी आहे। जॾहिं तव्हां अहिड़ी का शयूं इस्तेमालु कंदो त तव्हांखे इहा तकलीफ़ वधी सघे थी। इन जे करे ॻाढ़ो मिर्च असांजो दुश्मन आहे, ॻाढ़ो मिर्च तमामु घटि में घटि इस्तेमालु कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां मानी तव्हां पंहिंजे टाइम ते ज़रूरु खाईंदा कयो, यानी जेको टाइम आहे राति जो तक़रीबन मां इहो सजेस्ट कंदुसि त 8 बजे अव्हांखे 7 बजे 8 बजे तव्हांजे राति जी मानी खाइणु खपे त जीअं सुम्हण जे टाइम खे थोरो वक़फ़ो मिली सघे ऐं तव्हां थोरो मानी हज़म थी सघे। अहिड़े तरीक़े सां खाधे पीते खां पाणी जेको आहे सो ज़रूरु अॻे थोरो पहिरियों खाई पी मानी ऐं जल्दी पाणी पीअण बि जेको आहे सो मादे खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो तरियल शइ नुक़सानदेह आहे, खटी शइ नुक़सानदेह आहे। सुठो फ्रूट जेको आहे सो इस्तेमालु कयो, अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो। हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसण जी आदत विझो, सौंफ़ तमामु हिकिड़ो मादे खे जेको आहे सो साफ़ु रखे थो, ख़ुशबूदार रखे थो ऐं तकलीफ़ुनि खां जेको आहे सो बचे थो। पाणी जो इस्तेमालु तमामु ज़्यादा कयो, चांहि जो इस्तेमालु बंदि कयो, खीर जो इस्तेमालु अव्हां पंहिंजे मामूल में आणियो, इनशाला तव्हां अव्हां बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदो ऐं सिहतयाब थी वेंदो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो जेके बि इहे असां वटि जेके ॿाहिरियूं शयूं जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो बर्गर वग़ैरह या मुर्गन ग़िज़ाऊं इहे तमामु हानिकार आहिनि ऐं नुक़सानकार आहिनि, इन्हनि खां तव्हां काफ़ी बची सघो था। ऐं जेको अॼुकल्ह जो दौरु आहे डिप्रेशन जो दौरु आहे ऐं अव्हां जेको आहे सो घणा घरनि में वेही करे घणी मोबाइल इस्तेमालु कंदा, इन खां बहितर इहो ई आहे त तव्हां ॿाहिरि जेको आहे सो स्पोर्ट्स में जेको आहे सो हिसो वठो, कुझु रांदियुनि में, कुझु वॉक में, त इन सां बि जेको आहे सो तबियत ते तमामु घणो जेको आहे सो फ़ाइदो पए थो। तव्हां डिप्रेशन खां बची सघो था, बेकार ॻाल्हियुनि खां बची सघो था, बेकार ख़्यालातनि खां बची सघो था, सुठा ख़्यालात हूंदा ऐं तव्हांजी ज़िंदगी सुठी गुज़री सघे थी, तव्हां होर सारी बीमारियुनि खां जेको आहे सो बची सघो था। जी सर,
1: तमामु बहितरीन दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेरापुर FM 94 जे स्टूडियो मां लाइव अव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहबु, हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचार ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। वज़रीअ लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था 0301-91-851 ऐं सन साहब खे चवंदासीं त उहे बि कुझु बीमारियुनि बाबति ॿुधाइनि असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे, जेके दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि। डॉक्टर साहबु, हफ़्ते जा 6 ॾींहं क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनखे बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, पाइल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। 0301-91-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि।
0: जीअं त असां माहिर अमराज़ कुझु बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, जीअं गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरॻ जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु ऐं नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जे खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि में न वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
1: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-91-851। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। अक्सर करे मरीज़ लाइलाज थी करे वॾनि वॾनि इस्पतालुनि मां, वॾनि वॾनि शहरनि मां वापसि थी करे वरी बि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां हर इलाज मौजूदु आहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे, डॉक्टर साहबु इलाज कंदो आहे ऐं यकीननि अलाह ताला जे हुकुम सां ई रिज़ल्ट मिलंदो आहे, माण्हुनि खे शिफ़ा मिलंदी आहे। जॾहिं शिफ़ा मिले थी तॾहिं इंसान जी पंहिंजी दिलि हिकिड़ी मुतमैन हूंदी आहे। त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़। ही वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरा। व्यापर 03003385569।

0: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
0: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरन खे सखर वारन जो चारो मसालो ई खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: साफ में बताए तो
1: अदमा ते में सूर दो पाए सजे मते में सूर दो पाए
2: साईं खावे पासे अदम है
1: अदमा ते में सूर दो पाए वो भी खावे पासे में और पानी तो गले तो खे दो चाहे भला जुबान को दस जा
3: मैग्रीन पेन इनखे चइबो आहे यानी हिकु पासे ॾांहुं ॿिए पासे ते जेको सूर वञे त माइग्रेट मां निकितल हूंदो आहे यानी माण्हू जेको आहे मैग्रीन पेन इनखे चइबो आहे पोइ चाहे कंहिंखे सॼे पासे बि पइजी सघे थो कंहिंखे खॿे पासे बि पइजी सघे थो अहिड़े पेशंट खे जॾहिं तकलीफ़ वधी वेंदी आहे त पोइ ईअं तकलीफ़ महसूसु थींदी आहे ॼण मथे में हथोड़ा लॻनि पिया ऐं अंधेरे में तकलीफ़ हुनजी वधंदी आहे ऐं मिठाण खाइण सां हुनजी तकलीफ़ वधंदी आहे ज़्यादा ॻाल्हाइण सां हुनजी तकलीफ़ वधंदी आहे इन जे करे उनजी दवा जेको आहे सो मेडिकल में केतिरी बि सिर्फ़ु आराम खां सवाइ ॿी का बि टेबलेट दवाई हुनखे न ॾींदा आहिनि ऐं उहा बिंग सिर्फ़ु टेम्पररी टाइम लाइ हूंदी आहे को बि उनजो इलाज न आहे असां वटि अलहमदिल्ला अलाह ताला जा करोड़े अहसान आहिनि इन मर्ज़ जे बारे में बि असां वटि व्यूज़ मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं इन मर्ज़ जो बि असां कामयाबु हद ताईं 101% असां 10% इलाज कयो आहे ऐं कामयाबु वियो आहे कंहिं बि पेशंट खे ऐं ख़ासि करे इहा अलामत औरतुनि में बि ज़्यादा थींदी आहे मर्दनि में बि थींदी आहे लेकिन औरतुनि में कुझु ज़्यादा ई थींदी आहे उन जूं बि वजूहत आहिनि लेकिन हिन अदे खे जेकॾहिं इहा तकलीफ़ आहे त मां उनखे सिर्फ़ु मशवरो इहो ॾींदुसि त ॿी दवा खे छॾे करे होम्योपैथिक हुनजी ट्रीटमेंट कराए इनशा ताला कुझु ई अरसे में इहो अदो ख़ुदि अव्हां खे पाण व्यूज़ ॿुधाईंदो त मुंहिंजी तकलीफ़ छॾे वई आहे अलाह जे हुकुम सां
1: ख़तमु थी वियो डॉक्टर साहिबु आख़िर में मां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा ऐं ऐं चाहींदुसि त तव्हां जेके ॾींहुं वेहो था क्लिनिक ते उहो बि दोस्तनि खे ॿुधायो पंहिंजो नंबर बि नोट कराए छॾियो कहिड़े कहिड़े टाइम मां असां राबितो करे सघनि था डॉक्टर साहिबु
3: जंहिंसीं क्लिनिक जो शेड्यूल टाइम अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु ॿुधाईंदासीं हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो छंछरु आचर सूमर अरबा ख़मीस संगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे जुमे जो ॾींहुं छंछर जो ॾींहुं आचर जो ॾींहुं अलबत्ता दवा मरीज़ खे पंहिंजी वठणी पवंदी आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां टाइमिंग जेकी आहे सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं क्लिनिक जी एड्रेस जेकी हूंदी आहे कोटड़ी रोड साम्हूं वधरपुटा पेट्रोल पंप ऐं जेको सो मेहरापुर शहर इहो ज़रूरु यादि कंदा ऐं आख़िर में पैगाम सभिनी दोस्तनि जे लाइ ख़ासि करे यंगर्स जे लाइ इहो ई आहे त माउ पीउ जंहिंजो जहिड़ो आहे उनजे लाइ तमामु जेको आहे सो गनीमत आहे ऐं उनजी ख़िदमत ज़रूरु कंदा करियो ऐं माउ पीउ जी ख़िदमत करण सां माउ जे पेरनि जे हेठां जनत आहे इहो तव्हां ॿुधो ई हूंदो लेकिन माउ पीउ जी ख़िदमत करण सां बि अव्हांखे न सिर्फ़ु जनत मिलंदी बल्कि अव्हांजो सारियूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं वॾी महिरबानी दुआनि में ज़रूरु यादि
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ जेके सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया हुआ प्रोग्राम जो बि वक़्तु पियो अचे थो पंहिंजे पुॼाणे जे तरफ़ वञे पियो वक़्त जो अहसासु तंहिंजे करे सभिनी दोस्तनि खां असीं माज़रत बि वठंदासीं जिन खे कॉल्स जिन जूं शामिलु न आहियूं करे सघंदा ऐं तमामु घणियूं कॉल्स हूंदियूं आहिनि प्रोग्राम में इन ते अॼु प्रोग्राम जो बि वक़्तु पियो अचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो त असांखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान अलाह वाहिगुरु

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पेट्रोल के अघन में लगातार वाद-विवाद, वफाकी हुकूमत पारा मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने ते होर सरकारी एनर्जी इदारन में हफ्ते में चार ढीं कम करण की तजवीज. कारोबारी मरकज भी हफ्ते में टे ढीं बंद रखने जो फैसलो. अद सरकारी गाड़ियों भी ग्राउंड क्यों व्यों. जुम्मो छंछर आचर मोकल होंदी. सरकारी मुलाजमन के भी रोटेशन तहत ऑफिस में घुराण ते होर हतमी फैसलो वजीर आजम की सदारत हेठ थींदड़ इजलास में कयो वेंदो.
4: वफाकी हुकूमत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी शिपमेंट है, ये कौन सा जहाज है जो रात को उड़ता है और अगले दिन 11:30 बजे पाकिस्तान पहुंच जाता है और वो कीमतें जो हैं बढ़ा दी जाती हैं. ये लेवी जो है इसके ऊपर खत्म की जाए फौरी तौर पे.
5: पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस. दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट इट में से नो. The I David and the resolution is carried.
6: हम इनकी भरपूर ताईद करते हैं रेजोल्यूशन की और हम वफाकी हुकूमत को हम गुजारिश करते हैं कि अगर जब तक आपके इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं, हमें आपकी मजबूरी पता है, तब तक आप लेवी को खत्म करें ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना हो.
7: इनकी हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है. मेरा ख्याल इनको ये डर होगा कि मुखालफत के ऊपर से इनकी नौकरियां खत्म हो जाए.
3: सिंध असेंबली पेट्रोल जो कीमतों घटाने बाबत ठहराव मंजूर करे वरतो. एमकेएम पारा मुखालफत सीनियर वजीर शजील नामेवण पारा वफाकी हुकूमत का पेट्रोल ते लागू लेवी खत्म करने जो मुतालबो. शजील नामेवण चयो त 2008 में पेट्रोल महंगो थियण ते एमकेएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत का धार थी वही हुई. हाणे भी एमकेएम वफाकी हुकूमत की इतिहादी है. हुकूमत से मामले ते गलाए पघारदार तबको पीसी वो है. वफाकी हुकूमत होश का कम वे पेट्रोलियम लेवी खत्म करे. सूबाई वजीर सईद खरी है तो वफाक में नौकरी खत्म थियण के खौफ का एमकेएम ठहराव की मुखालफत कई. हुकूमत पारा पेट्रोल ते वाम के डिनल रिलीफ टैक्स का वधिक है. लेवी 80 रुपया है. वजीर आजम 100 रुपये जो रिलीफ दिनो है. वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक है त मुल्क वडियन गाड़ियन वारन जो भी है पर वजीर आजम सब का पहरी नंढियन गाड़ियन वारन के रिलीफ दिनो है. पेट्रोल ते रिलीफ वारी स्कीम इस्लामाबाद में शुरू थी वही है. बे मुल्क में भी जल्द शुरू थी वेंदी. वजीर आजम जो पेट्रोल ते रिलीफ दिनो है वो टैक्स का वधिक है. जंग खत्म थियण से समूरी दुनिया के रिलीफ मिलो. यमनी होसियन की सऊदी सरजमीन से हमलन बाद मक्के की सिक्योरिटी सख्त. सऊदी काबीना के हमलन को भरपूर जवाब देने का ऐलान. सऊदी वली अहद काबीना के इजलास बाद मिस्र पहुंची वो. काहिरा पहुंचने से मिस्री सदर सऊदी वली अहद जो आदर भाग कियो. मुलाकात दौरान वितरफन लागापन खत्े की सूरत हाल से गालू कई हुई.

बाबुल मुंदब की बंदिश जा नतीजा तबाह कंदड़ निकली सकन था कतर दुनिया के खबरदार कर छो। कतरी पढ़ी वजारत के अमलदार इब्राहिम हाशमी है दुनिया पहरी ही अपना हरमुस की बंदिश भोगे रही है। बाबुल मुंदब के सागी सूरतयाल में न गुजरन घुर्जे, मसले जो हल गालियन जरिए कढ़ो वने।

0: अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़, जीअं ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़ख़ीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयारु कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़ख़ीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूदु अमरीकी अॾनि खे बि नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। बसोरातियुनि खां रस्तनि ते मौजूदु ईरानी अवाम दुश्मन जी शिकस्त खे साबित करे छॾियो आहे। ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत बि अवाम जे अज़म सां गंढियल आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ चयो आहे त दबाउ या पाबंदियूं ईरानी अवाम जे वतन सां मोहबत घटाए नथियूं सघनि। वफ़ाक़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट मां पीटीआई बानी वारे केस जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। हाई कोर्ट खे बि साॻी नोयत वारनि केसनि जो रिकॉर्ड मोकिलण जो हुकुम। वफ़ाक़ी आईनी अदालत कैदियुनि जी निजी अस्पताल में इलाज वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे पीटीआई बानी केस जो रिकॉर्ड तलब करण जी सज़ा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान चयो आहे त दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब ग़रीब ऐं अमीर लाइ आइन ऐं कानून हिकु जहिड़ो हुजणु घुर्जे। जस्टिस अली बाकर नदवी अटॉर्नी जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त छा तव्हां सुप्रीम कोर्ट में एतिराज़ वारियो हो। अटॉर्नी जनरल जवाबु ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो। आइन जी तशरीह जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाक़ी आइनी अदालत वटि आहे। जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अल्तवा हेठि केस फ़ौजदारी नोयत जो आहे। असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए में रोजी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-33838

5569. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: मेरा फ्रेंड।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आईं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
1: स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।

0: मिल्क राइस जो खूबसूरत जबरदस्त प्रोडक्ट्स जिनमें शामिल आए मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सॉप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम आज के दोस्त इस्तेमाल कन पे जिन दोस्तन कल मान दिनो महबूबन जिन कॉल्स कई व्हाट्सएप ते रिप्लाई आयो ग्रुप में असा सा गल बोलती त काफी दोस्तन जको आता अप्रोच कई आ है जको आ मिल्क राइस प्रोडक्ट परचेस कन पे काफी दोस्त इस्तेमाल भी कन पे जिनके बटे डी गुजरिया यानी हफ्तों गुजरिया उन्होंने फीडबैक भी वादा उन गाल बोल भी कंदे असा सा गाल बोल कर असो कॉलिंग नंबर है 0300-931-9667 नंबर आहिस्ता है सिंधी में रिपीट क्यों 0300-9393-6067 इन कॉल कर लाइव गाल बोल असा कर सको था कचहरी भी थी अवां जी फरमाइश भी पूरी थी छाकाण प्रोग्राम अवां जे करे आए चाहे क्रीम हुए या प्रोग्राम हुए एक्नी हुए एक्नी क्रीम हुए या प्रोग्राम हुए ब्यूटी सोप हुए तोड़े प्रोग्राम हुए बिन्हीं टिन्हीं प्रोडक्ट्स से गड प्रोग्राम लाजमी है प्रोग्राम सा ही अवां जुड़ल आयो असा जुड़ल आयूँ सजे मैरापुर के एक भेरो मुझे तरफा मुझी सजी टीम की तरफा मिल्क राइस जफर इकबाल एम सिद्दी की तरफा अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों गाल बोल भी कंदासे मिल्क राइस प्रोडक्ट जो जबरदस्त रिस्पॉन्स अवां जो अची रहो है अजा एक्सपेक्ट कंदासे त जिन दोस्तन असा कंटिन्यूसली गाल बोल भी कई है जेके न्यू कॉलर जेके ट्यून कन था असा प्रोग्राम के नवा जेके त लिसनर्स अचन था बुधन था सो उन्हनि जे लाइ भी बुधाईंदो हलां त मिल्क राइस ब्यूटी शो उन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर।

जी दोस्तों, जिन जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे उन्हनि में तमामु ख़ूबसूरत जनरल स्टोर, ज़बरदस्त प्यारा प्रिय माण्हू, उन्हनि जा जेके ऑनर ऐं उन्हनि जे तरफ़ां बि असांखे रिस्पॉन्स अची रहियो आहे, कस्टमर्स जे तरफ़ां बि असांखे रिस्पॉन्स अची रहियो आहे। कस्टमर्स खे असां हिते असां पंहिंजे शो में असां पंहिंजो फ्रेंड, असां पंहिंजो दोस्त, असां पंहिंजा लिसनर्स सम्झूं था। ऐं जेके लिसनर्स असांखे ॿुधनि था ऐं काफ़ी दोस्त मूंखे जेको आहे हिकिड़े ॿिए प्रोग्राम में बि ॿुधंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी जूं महबूबनि जूं मोहबतूं, लख लाइक थोरा कुर्ब अवां जा। ऐं असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हां खे ठीकु ठाक कचहरी थींदी आहे, असांजे ॿिए प्रोग्राम में बि अव्हांजी कंट्रीब्यूशन ऐं पार्टिसिपेशन रहंदी आहे, जंहिंखे तक़रीबन जेको आहे त मुनो सिंध ॿुधी रहियो हूंदो आहे। हिन प्रोग्राम खे अव्हां मेहरापुर ऐं भरपासे वारा ॿिया शहर ॿुधी रहिया आहियो, असां मेहरापुर खां कनेक्टेड आहियूं जी एफ एम 94 मेहरापुर खां। सो दोस्तों, असांजी प्रोडक्ट्स जिन जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहिनि उन्हनि मज़ा ख़ुशी जनरल स्टोर मेहरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर।

जी दोस्तों ॻाल्हि ॿोल बि थींदी, असां हेल्पलाइन नंबर बि ॿुधाईंदासीं। असां जेको आहे त ॾाढा मशहूरु आहियूं, अव्हांजा ममनून आहियूं, मोहबतूं मिली रहियूं आहिनि, मान मिली रहियूं आहिनि ऐं तमामु प्यारो रिस्पॉन्स असांजे मिल्क राइस जे ऑनर जेको आहे त मलिक ज़फ़र इक़बाल जे तरफ़ां बि महबूबनि खे मिली रहियो आहे। काफ़ी दोस्तनि खे गिफ्ट बि मिलिया आहिनि, कुझु रहियल बि हूंदा, जेके रहियल हूंदा उन्हनि खे बि मिली वेंदो ऐं गिफ्ट सां गॾोगॾु अव्हांखे ॿियूं प्रोडक्ट परचेज़ बि करणियूं आहिनि ऐं क़ीमत एॾी वॾी न आहे, ॻाल्हि मोहबत जी आहे ऐं प्रोडक्ट असां का न का घर में इस्तेमालु हूअं बि कयूं था, सो बहितर आहे त जेकॾहिं बहितर रिज़ल्ट मिले त असांजी प्रोडक्ट तव्हांखे इस्तेमालु कयो। वधंदासीं हिकु ख़ूबसूरत ट्रैक नॉन ट्रैक खां पोइ वरी वधंदासीं, अव्हां जो लाइव कॉलिंग बि वठंदासीं। साइण अब्द परवीन जी आवाज़ में तमामु ख़ूबसूरत ट्रैक, सभिनी सरणनि जे नाम।

0: जी अवाम थी रहा हो साइन अब प्रवीण की आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक यार को हमने जा बजा देखा हिंसर असा गड कॉलर लाइन से मौजूद है सो अस प्रोग्राम में कॉल शामिल कदे हेलो असलकुम केर साई किथा का
1: हेलो हेलो
0: सर एकड़ो सेकंड आवाज बिल्कुल को अचे बुध में हेलो
2: साईं नजीर अली जरवार गोठ पीरगाड़े का
0: नजीर अली जरवार गोठ
2: हेलो
0: जी जी रेडियो साइड के पंजे पाना का केड़े गोठ का
2: हेलो
0: जी जी आवाज अचे पे वहां जो नजीर अली जरवार वरी आवाज आवा
2: पीर गाड़े का साईं
0: पीर गाड़ो आवाज आवा जो बिल्कुल कटजी तो वजे पेरा गोठ पीर गाड़ो
2: हेलो
0: जी जी पेरा आवा जो आवाज डिस्टर्ब पे करे बिल्कुल घट पे थी वने
2: जी साईं जी पीर गाड़े दो
0: अच्छा अच्छा वेलकम भली यार पेरा प्रोग्राम में प्रोग्राम के पे लगे हेलो अवां रेडियो पंहिंजे पाण खां थोरो परे रखो ओॾो बि आवाज़ पई अचे डबल हलो माज़रत खां आहियूं

0: जी दोस्तों, अवां जो मोहब्बत उमान लख लायक कुर्ब अवां प्रोग्राम में शामिल थी रहा हो, कॉल भी कर रहा हो, लेकिन हाँ मसलो ये होंद है तो पैं आवाज़ पा बुध ला वरी असा के रेडियो में वो जो ना नेटवर्क दौरान वह डिस्टर्ब कहती है कॉल। सो काइंडली जो जैसे भी कॉल किया तो रेडियो या मोबाइल जैमें भी यूज़ किया आवाज़ घट रखो। कॉलर मौजूद है असा लाइन से, असल केर साई सर आवाज जो ही इशू है जी। हेलो जी जी अचे पे पर तमाम घट जी जी अची पे अचे पे ए वन अल्लाह जा असा नवा बुधायो बिल्कुल ठीक ठाक है जी जी अचे पे आवाज आवा जो। हेलो जी जी अचे पे आवा जो आवाज पेरा।
1: हेलो
0: जी जी आवाज अच्छे पे मुझो।
1: हेलो
0: आवाज आवाज अच्छे पे साईं जी जी माजरत खायूं शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है नेटवर्क में। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर।
0: केर साईं किथा का नजीर जरवा साहब वेलकम भलीकार भी हर कॉल लगी वही अवा जी
2: जी साईं जी
0: डिस्टरबेंस लाइ माजरत खायूं कॉल ड्रॉप थी। प्रोग्राम कदे का बुधो पे असा जो
2: साईं डेली ता जो बुधनायो सिर्फ असा के नंबर ता जो हाथ न तो चे।
0: अल्लाह हू अकबर केड़ो नंबर असा न पे होत जे असा बुधाए बुधाए थकी पियो
2: साईं ता बुधायो ता अंग्रेजी में ना
0: असा मा सिंधी अज सिंधी बुधायो आ कल का वडी शिकायत मिली अज सिंधी बुधायो आ
2: खूबसूरती
0: भाजाई घर में अमड़े नदिन लाए ये प्रोडक्ट असाजी वापरा ना
2: जी साईं जी
0: कदें
2: डेली साईं बुधना आयो
0: न वो तो बुधो पया ना बुधो पया ता अमल तो कोनो पया असा पेंजी प्रोडक्ट जी तारीफ पे क्यों तमा एक बेरो इस्तेमाल करे तहा भी असा के बुधायो तो प्रोडक्ट कम जी आ है ना सर वरी आवाज आवाज कट जे पियो। हेलो नजीर साहब आवाज आवाज ड्रॉप पे थे
2: जी
0: जी जी। हेलो साईं मुझा मदर खायूं प्यारा काफ़ी दोस्त बुधी रहा न कनेक्शन में मसलो है सो अगेन तवाजी कॉल लगी तो वरी गाल बोल करे वड़दासीं थैंक यू। अवां जे दम सां असां जो प्रोग्राम आहे मिल्क राइस ब्यूटी शो कॉलर आहिनि असां सां गॾु शामिल कंदासीं। हलो अस्सलाम वालेकुम साईं मुंहिंजा आवाज़ घटि पियो अचे अव्हांजो। वालेकुम अस्सलाम सर केरु किथां खां साईं साईं मुझा वेलकम वेलकम भलीकार हुसैन बख साहब कहिड़ा हाल आहिनि खुश आहियो दुआऊं दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं अलाह जा एहसान मूंखे मिलियो फोटू तस्वीरूं मिलियूं हाणे अवां ॿिन्हिनि मंझां कहिड़ा आहियो हिकिड़े जी ॾाढी वॾी आहे हिकिड़े जी नंढी आहे माशाल्लाह पर्सनैलिटी तव्हांजी हिकु आर्टिस्ट लुक ॾिए पई साईं असांजो साईं तमामु प्यारो हिकिड़ो सिंध जो वॾो नाम आहे चनो साहिबु चक जो हारून चनो साहिबु उहो वॾो आर्टिस्ट आहे हारून चनो साहिबु। सो उन जहां चेहरो मिजाज बो मुसविर आए साईं डाडी पेंटिंग ठाइंदो आ खूबसूरत भितियों अवां जो रंग सा चिटे छरिंदो आ सोणियो कंदो आ आ उन ते तस्वीरों लगल हुंदी डाडी प्यारी प्यारी ओ मिजाज अंदाज लगो वाह वाह हां हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल साईं बिल्कुल असा हुआ भी सिंधी मानू जो कोन सूफी मिजाज आहु असा तो यही चोंदा हु तो अलै जे छा में राजी आ अलै त कहसा राजी आ
2: बिल्कुल साईं
0: यही
2: आए
0: ऐ
2: दादी खुशी थे
0: ऐ बियो वरी माफ कर जो आवा जी गाल पे कड्या बियो वरी जो आ त की रिझाया तो के की परचाया
2: हां बिल्कुल हां मैं बिल्कुल की रिझाया तो के की परचाया वाके से आपका परिंद जो आवाज आए से सुलेमान शाह की शायरी आ
0: हां
2: इन जो सुर सही तो
0: हां
2: रिझाया तो के की परचाया
0: वाह
2: की रिझाया
0: वाह क्या बात है सही क्या बात है हुसैन बख्शियाल साहब मजो अच्छी हो दिल चवे दी साईं हुसैन बख्श साहब गड हुंदो तो पो ताँ सा दिल चवे दी तो कचहरी कजे रूबरू आवां जी ओताक ते अच जे ओते जो यादगार कैप्चर को वीडियो भी कजन है दिल जी गाल प्रोग्राम ओते रिकॉर्ड भी कजे
2: इंशाल्लाह बिल्कुल सर ये थींदो ऐं तव्हां खे जॾहिं बि मुनासिब टाइम लॻे त मूंखे सिर्फ़ तव्हां इतलाह कजो
0: साईं मां रुगो अवां खे न सॼी सिंध खे हाणे हींअर जेको असांजो स्टेशन कनेक्टेड आहे जिते जिते दोस्त असां हलिया ईंदासीं अवां रुगो जेको आहे अवां रुगो यादि कयो असां हलिया ईंदासीं जॾहिं जीअं टाइम मिलियो असां सभिनी दोस्तनि वटि हलिया ईंदासीं
2: तव्हां सही बिना इतलाह असां वटि पहुचंदा तॾहिं असां अव्हां जे लाइ हाज़िर हूंदासीं असां ॻोठाणा थींदा आहियूं ॻोठनी हूंदा आहियूं ऐं ऑलरेडी असांजी उतां खे तयारु हूंदी आहे हर भाउ लाइ हर महिमान लाइ
0: वाह वाह वाह वाह अॻे
2: बि सखी आहे भई सिंध वारा माण्हू सखी
0: उहा ॻाल्हि आहे
2: बिल्कुलु उहो जेको आहे ॿाहिरनि सां गॾु
0: उतारे में इहो फ़र्क़ु हूंदो त उतारो हमेशह खुलियलु हूंदो ऐं उताक खोलणी बि पवंदी आहे दोस्तनि लाइ दर खोलणा पवंदा आहिनि बाक़ी उतारा हमेशह खुलियल हूंदा उते उते वेही माण्हू जी जी
2: सम्झो त असांजो ॻोठ जो उतारो 24 कलाक
0: क्या क्या बात आहे प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया साईं भाजाई करे इस्तेमाल असां बचड़ा कन भाइटियूं भाइटा कन सब इस्तेमाल कन इहा प्रोडक्ट बिल्कुलु ज़िक्र कयो बाबर साहब सां ऐं जेको आहे त ज़फ़र इक़बाल साहिब बि जेको आहे ग्रुप में शेयर कई अवां तस्वीर ऐं ॾाढो ज़िक्र कयईं ख़ुश मिज़ाज अंदाज़ सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई हलो अहिड़ी ख़ूबसूरत हसीन महफ़िल हली रही कॉल डिस्कनेक्ट थी वई असीं मादत खां आहियूं

जी दोस्तों अड़ी प्यारी महफिल का पोए गीत भी थियण घुर्ज पर गीत का अग में असा वंस अगेन असा अवा दोस्तन जा थोरायता हूँ जे मिल्क राइस ब्यूटी शो बुधी भी रहा मिल्क राइस जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी कर रहा है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम एक्नी ताने जैके दाणा दाग दबा ये हुंदा उ इस्तेमाल कंदा पर असा जो ही ब प्रोडक्ट मथियां त टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आहन ऐं दाणनि जी बि हिकिड़ो उमिरि बि हूंदी आहे उन उमिरि में लाज़मी बि थींदा आहिनि उन उमिरि जे हर जेको आहे नौजवान चाहे असांजी अदी चाहे भाउ भेण भाइटियो भाइटी उहे सभई इस्तेमालु करे सघनि था ऐं उन खां अलावा जेको आहे ब्यूटी क्रीम उनजो त इस्तेमालु जेको आहे त सदाई तव्हां करे सघो था हर वक़्तु करे सघो था उनखे त फेशियल ऐं मसाज तौर ते इस्तेमालु करे सघो था उन खां पोइ ब्यूटी सोप सां अवां फेस वॉश करे पंहिंजो डेली जी ग्लो पंहिंजे चहिरे ते आणे सघो था ऐं वाक़ई इन करण सां ईअं बिल्कुलु बि थींदो आहे प्रोडक्ट्स ॿियूं बि घणियूं पर असांजी प्रोडक्ट आज़माए ॾिसो असांजी प्रोडक्ट्स असांजी दावा आहे त टिनि ॾींहंनि में रिज़ल्ट ॾींदी आहे जेके दोस्त मुसलसल इस्तेमालु करे रहिया आहिनि या कंटिन्यूसली घर में बिल्कुलु डेफिनेटली काफ़ी प्रोडक्ट्स खां वधीक असांजी प्रोडक्ट असरअंदाज़ थींदी छाकाणि त ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले और हम दावा नही दलील देते हैं हुसैन बख्शियाल साहब नवाबी संगत इन्हनि जी सलामत हुजे उन्हनि चयो त असां जेका दावा कंदा आहियूं सो उन खे निभाईंदा आहियूं।

जी वेलकम भलीकार खुश आमदीद प्रोग्राम मिल्क राइस ब्रिटिश शो सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अवां ॿुधी रहियो जी एफ़एम 94 मेहरापुर। दोस्तो प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी लाइ अवां हेल्पलाइन ते कॉल कंदो ऐं काफ़ी अवां जूं कॉल्स आयूं आहिनि, सो इन करे ई असांजे मेहरापुर जे नाले वारनि जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे। जिन जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट्स मिल्क राइस जूं प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि मज़ा खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अवां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे, उहो बि अॼु सिंधीअ में सवलीअ में आसान तरीक़े सां ॿुधाइबो। नंबर नोट करे वठो आसान तरीक़े सां, त 0300 310 510 9। नंबर बि तमामु प्यारो ऐं आसान ऐं माण्हू बि दिलबर दिलरुबा मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ साहिबु, इन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करे अव्हां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे जनरल स्टोर ते, पंहिंजे शहर में, पंहिंजे तर में कराए सघो था। ऐं इन खां अलावा असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हां असांजो लाइव कॉलिंग नंबर मिलाईंदो, उहो बि तव्हांखे सुकून सां स्लोली अंदाज़ में सिंधीअ में सम्झायां त 0300 931 96 67। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हां कॉल कंदो त मूंसां ॻाल्हि ॿोल थी सघंदी ऐं मूंसां ॻाल्हि ॿोल अव्हां जा मनपसंदि शेर बि हलंदा, शायरियूं बि थींदियूं। अॼु जेको कॉल कंदो लाइव, उन खां असांजी फरमाइश बि हूंदी नंढड़ी, उहो इहा त हिकिड़ो कोई ॿिए सूंह ते, ख़ूबसूरती ते असांखे शेर ॿुधाए। हूअं त शेर असांजे ॿिए प्रोग्राम में काफ़ी शेर शेर हूंदा आहिनि, गिदड़ हिकु बि न पालींदा, हू रुगो शेर हूंदा आहिनि। सो अॼु सूंह ते, ब्यूटी ते, छाकाणि त असांजो प्रोग्राम आहे ब्यूटी शो, उन ब्यूटी शो में सूंह जे मथां शायरी ऐं जग जहान शायरी जूं सिनफूं आहिनि खोड़ सारियूं, पर जंहिं मथां सभिनी जी पसंदीदा जेका शायरी आहे उहा सिनफ़ नाज़ुक, यानी कि डेफिनेटली मेल कंदो फीमेल लाइ, फीमेल कंदी मेल लाइ। इहो कुदरत जो सिस्टम आहे, पोइ चाहे शायरी हुजे या तारीफ़ हुजे, तारीफ़ त फितरी अमल आहे न, पोइ तारीफ़ खे शायर रुगो जेको आहे त घड़े करे ठाहे ठोके उहो शायरीअ जी ज़ुबान में चवंदा आहिनि। अॼु दिलि चए थी त मां शुरूआति कयां त शायरी आहे छा, मां पंहिंजे हिकिड़े ॿिए प्रोग्राम में उहो पढ़ंदो आहियां ऐं पढ़ी आहे, जिन दोस्तनि ॿुधी हुजे। अॼु हिन प्रोग्राम खे बि जेको आहे त ॾाढो रोमांटिक ऐं रोमांस सां भरपूर बणाइण लाइ असां जेको आहे त अव्हां सां शायरी जी ॿोली शेयर कयूं था। जी दोस्तो, अव्हां जो मूंखे हिते जो हिते ट्रांसमिशन ते रिप्लाई त कोन थो अचे, पर अव्हां जे प्यार मझां, अव्हां जे ॻाल्हि ॿोल मझां मूंखे महसूसु ऐं अहसासु थी रहियो हूंदो आहे त अव्हां जी दिलि जी ॻाल्हि छा आहे, अव्हां जी मोहबत चाह छा आहे, प्यारु छा आहे। ऐं प्यार बिना त हीउ संसार बि अधूरो आहे, संसार बि नाहे। सो हर माण्हू जेको आहे त मोहबत ई आहे मिज़ाजनि तख़लीक़, उनखे जेको आहे ख़ुदा कयो आहे उहो सुहिणो कयो आहे। सो ॻाल्हि पई हले त जेको बि अॼु कॉल कंदो उहो प्रोग्राम में शायरी शामिलु कंदो। हाणे सूंह ते शेर हूंदा सभिनी जा, पर मुंहिंजो हाणे सूंह ते शेर न आहे डायरेक्टली, पर उन में ओवरऑल मुंहिंजो शायरीअ जो पसे मंज़र बयानु थियलु आहे त शायरी आहे छा। इहे त मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां ॿुधाईंदा शायरी छा आहे। मां शायरीअ खे डिस्क्राइब शायरी में कंदुसि त शायरी छा आहे।

जी दोस्तों घणी देर जो तमीद को बुधूँ अवज की नज़र नाचीज पैंजी शायरी तो पिक मुखा कहीं पुछो तो शायरी है शायरी की मिली मुअर्ज किया शायरी सच गाल बार दिल ता गमन जो ही लाही शायरी सच गाल बार दिल ता गमन जो ही लाही कंखा रुसियल हुए कंजो साथी अगर कंखा रुसियल हुए कंजो साथी अगर रुसी वैलन के ही परचाई दिया शायरी सच गाली दिया कोई केडो भी कंखा को दूर रहे कोई केडो भी कंखा को दूर रहे पहजन प्यारन सा प्यारा मिलाई दिया शायरी सच गाली दिया बार दिलता गमन जो ही लाही दिया तवज्जो तलब शेर है थोरो आहे मजो थोरो आ दर्द भी थोरो आहे मजो थोरो आ दर्द भी सूर सुमहल वरी से जागाई दिया शायरी सच गलाई दिया बार दिलता गमन जो ही लाही दिया कयो आबिद बयां पहजो अहवाल आ कयो आबिद बयां पहजो अहवाल आ गाल दिल जी ही सब के बुधाई दिया शायरी सच गलाई दिया बार दिलता गमन जो ही लाही दिया

0: जी कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में उन्हनि खां ॿुधंदासीं शेर। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां जी? अदा
1: जी साईं,
0: केर किथां खां?
1: साईं रिज़वान अली ख़ास खेली कोट ज़मीराबाद खां।
0: रिज़वान अली ख़ास खेली कोट ज़मीराबाद?
1: जी कोट ज़मीराबाद ख़ास खेली।
0: गोठ गोठ ज़मीराबाद ख़ास खेली। वेलकम भली कार प्यारा, खुश आमदीद प्रोग्राम में। प्रोग्राम ॿुधो पिया? प्रोग्राम जे बारे में छा ॼाण आहे, कंहिंजे मुतालिक़ आहे? ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ॼाण आहे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं प्रोडक्ट्स आहिनि असांजूं? ॼाण कॾहिं खां ॿुधो पिया, कॾहिं खां ॿुधो पिया प्रोग्राम असांजो? ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि। असां त प्रोडक्ट असां बार बार नाम खणूं था न पंहिंजी जो मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि, जंहिं मंझि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम आहे, मिल्क राइस ब्यूटी सोप आहे ऐं मिल्क राइस एक्नी क्रीम आहे। एक्नी माना जेका दाणा बाणा दाग दॿा हूंदा आहिनि न मोहिड़ा, उन्हनि लाइ उहा क्रीम आहे। त पोइ घर में अवां का न का प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा हूंदो न, क्रीम बि थींदी हूंदी, साबुण बि थींदो हूंदो। साबुण त हले थो न, त पोइ साबुण मां नथो पुछणु चाहियां त कहिड़ो थो हले, असांजो इस्तेमालु करे ॾिसो, जेकॾहिं असांजो उन खां बहितर हुजे त पोइ उहो कंटिन्यू कयो। पोइ इहो ब्यूटी जेको सोप आहे, इहो अव्हां खे असां बार बार स्टोर ॿुधायूं था, उन्हनि स्टोरनि मां कंहिं बि हिक ते वेंदो अव्हां खे मिली वेंदो। ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर, इन्हनि मंझां कंहिं बि जनरल स्टोर ते वेंदो अव्हां खे प्रोडक्ट मिली वेंदी। हाणे ॿुधायो को शेर असांखे हुसन ते, को सूंह ते, एवन दुआऊं अलाए असां को शेर ॿुधायो असांखे।
1: हैलो
0: जी जी जी, आवाज़ अचे पियो अव्हांजो?
1: हैलो
0: अदा, आवाज़ अचे पियो अव्हांजो? जी अदा, आवाज़ अचे पियो अव्हांजो? मुंहिंजो न पियो अचे? हलो, मुंहिंजो कोन पियो अचे? बिल्कुलु न। माज़रत कयूं, कॉल ड्रॉप करणी पवंदी, छाकाणि त जेकॾहिं आवाज़ु कोन पियो अचे त पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल कोन थी सघंदी। बाक़ी नेटवर्क ते अव्हांखे सभिनी खे मुंहिंजो आवाज़ु अची रहियो आहे, पोइ ही नेटवर्क मोबाइल जो उन ते कोई मसलो हुयो, इशू हुयो। हिकिड़ी ॿी कॉल अचे थी, उहा शामिल करे ॾिसूं था। हलो, अस्सलाम वालेकुम, केरु अदा किथां खां? साईं मुंहिंजा, साईं मुंहिंजा, साईं मुंहिंजा, वेलकम भली कार। अव्हांजी हीअ टे भेरे कॉल कनेक्ट थिए थी पर वरी डिस्कनेक्ट थी वञे। प्रोडक्ट जे बारे में अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थी वई, मां सम्झां थो, पोइ कॾहिं इस्तेमालु कंदो? जी किथे आहे? ॻोठ सजावल फ़क़ीर ते होलसेल जो अव्हांजो दुकानु आहे, उते अव्हांखे खपे थी। मां अव्हांखे मोबाइल नंबर ॾियां थो। मां इहो त हिते रेडियो ते मूंसां ॻाल्हि ॿोल थी सघंदी, प्रोडक्ट जेका आहे न असांजी उहा अवेलेबल करण लाइ तव्हांखे मलिक ज़फ़र इक़बाल सां ॻाल्हि ॿोल करणी पवंदी। उन जो नंबर नोट कयो पहिरियों त, जेकॾहिं प्रोग्राम ॿुधो था त प्रोग्राम में हर हर मां नंबर खणा थो, पर तव्हां हाणे पेन पनो खणो, मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां साईं जो। हा, लिखे थो पियो, नंबर लिखो साईं, 0300 310 510 9 0300 310 510 9। इन ते अव्हां ॻाल्हि ॿोल कंदो, साईं जो नालो लिखो, मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं ॿियो एम सिद्दीक साहिबु, इन ॿिन्हिनि मंझां कोई हिकिड़ो ॻाल्हि ॿोल कंदो, मलिक ज़फ़र साहिबु ई कंदो अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल। मुंहिंजा सलाम बि ॾिजोसि। हा साईं, साईं खे मलिक ज़फ़र खे मुंहिंजा सलाम ॾिजोसि, ॻाल्हाए करे कॉल ड्रॉप थिए त पोइ चइजो साईं प्रोग्राम ॿुधूं पिया, मिल्क इहो मिल्क राइस ब्यूटी शो, आबिद चौहान सां ॻाल्हि ॿोल थी, अव्हांजो नंबर मिलियो, डायरेक्ट कॉल दौरान जो प्रोग्राम में हले पो तो अस वो जो मसलो है वहाँ बुधायस इस्तेमाल पे घर में भी कर सोना यह प्रोडक्ट घर में पैं में थे थी बिल्कुल हाँ हाँ हाँ बिल्कुल अस वरी जो अवेलेबल थी वही तो मलिक जफर साहब तहां जो स्टोर असा नालो नोट कराइंदो वरी उहो भी अनाउंसमेंट थींदी तहां जे ते स्टोर जी ठीक है ना भा
1: असां के सुभाणे ही बुधाइंदो पांजो तो टाइम बा जते दुकान
0: तहां हाणे ही कॉल कंदोस मुझे प्रोग्राम माने कॉल खा पो ठीक है ना तहां हाणे ही कॉल कंदोस मुझे सलाम दिजो सो मुखे उनी वाली मुडे रिप्लाई कंदो ठीक है भा वो दोस्तन जा नाम शामिल करण चाहिंदो को फरमाइश करण चाहिंदो हाँ तो बुधंदा रहो जी एफ एम इनशाला वहाँ से गाल बोल कचहरियों थन्दी रही प्रोडक्ट के हवाले से गाल मलिक जफर इकबाल से करो कुर्ब प्यारा वही मेहरबानी लव यू थैंक यू

0: जी दोस्तों, इहो गीत बि इंजॉय कंदा रहंदासीं, अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। हिकिड़ो कॉलर असां सां गॾु लाइन ते मौजूद आहे, कॉल अटेंड कंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम, केर अदा किथां खां? केर सुणा? ठरी मीरवा खां जी। थोरो आवाज़ थोरो वाज़े चिटो। महबूब अली शहर साईं, वेलकम भली कार, ख़ुशि आमदीद प्यारा, कहिड़ा हालनि, ख़ुशि आहियो? ए वन दुआऊं अल्लाह साईं जा अहसान आहे, ॿाहिरि जूं दुआऊं। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम?
1: प्रोग्राम

0: जी, ओए ओए ओए ओए, क्या को शेर शा, को शेर शायरी बुधाइण चाहिदो, को शेर बुधाइण चाहिदो,
1: शेर ज़ैन वाला को ज़ैन तना बाजी ओ मिलकराई दी दूती दे ता कलाम थाए सुभाने बुधाइदा
0: दे। वाडे वाह वाडे वाह वाडे वाह, पूरो मन पाण मन शायर आयो,
1: शायर ना हो पर मेरे थाए ता के बुधाइदा दे।
0: मिलकराई दी ब्यूटी ते ता सुभाने मुके शेर ठाए पूरो कलाम ठाए बुधाइदो, आ हाने कुछ दोस्तन जा नाम शामिल करना चाहिदो, को सलाम को दुआ को न्यापा। वालेकुम सलाम, अवां जी सजी संगत के भी सलाम भा कुर्ब। हाँ हाँ हाँ, जफर इकबाल साहब के डेडिकेट अच्छे बुधो। थैंक यू पेरा, लव यू,
1: वरी मेहरबानी
0: कुर्बान।

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस सा ब्यूटी शो सा गड आऊ है अब चौहान आयो बुधी रहा हो जी एफ एम 94 मेहराबपुर। दोस्तों असा जी प्रोडक्ट माशाल्लाह बेहद रिस्पॉन्स मिली रहा है, वहां भाईरन की तरफा मोहब्बत मान प्यार मिली रहा है, लव यू उम्मीद क्यों था ता जेके भी दोस्त असा यूजर आन मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट जहाँ असाजी प्रोडक्ट ना अचो घर में इस्तेमाल कर सभी लाए जो सागी प्रोडक्ट है तुम का भी शै इस्तेमाल था कें भी प्रोडक्ट इस्तेमाल था उन सभी प्रोडक्ट का असा प्रोडक्ट अस दावा है तो वह बेहतर है उन दावा जो अस दलील दींदे इस्तेमाल करो रिजल्ट नजर इन वहाँ केतन दिन में ही रिजल्ट अचान शुरू थी वो है जो ब्यूटी क्रीम है पर कुछ दोस्तों अस क्रीम को इस्तेमाल क्यों पर उन्हें घर में अद्धी भेण माँ का भाजाई वह तो इस्तेमाल लाजमी कदी असाजी भाजाई सो इस्तेमाल लाजमी कदी बाकी हाँ तहाँ मर्जी तुम क्रीम अप्लाई ना कर तो साबुण तो है ही इस्तेमाल जैसे मोहिड़ा दाग धब्बा जल्द से चेहरे से तो उन्होंने लाए एक्नी क्रीम है मिल्क राइस की। सो प्रोग्राम लगभग असो पुराने पौतो है पैं पंज मिंट बचा गीत आखिरी बो अस प्ले कहे दिल चे थी तो मां तरफा तुम सभी बुधंदड़न के वो डेडिकेट क्या एक भेरो अवान बुधाई हलां तो जिन भी दोस्तों कॉलू क्यों मूँ उन्होंने पर्सनली भी नंबर दिनों उत लाइव कॉल के थ्रू मां वंस अगेन बीहर रिपीट तो कर चाहें तो मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिल हैं ब्यूटी क्रीम ब्यूटी सोप एक्नी क्रीम ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेहरापुर के तमाम सुठन वडन जनरल स्टोर से जैमन जैमें खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर कामरान मोहल जनरल स्टोर मेहराबपुर हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर। सो अज अस शेयर तो कें को बुधा बाकी सुभाने वरी को बो टॉपिक बी का गाल रखा न तो सुभाने सागी गाल के कंटिन्यू कंदे। सो हेल्पलाइन नंबर अवे बुधाई हाँ जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहो था तो वो है 0300-310-510-9 इन सा गड मां समझा तो मुख्य अज इजाजत दियो अजो के ढी ला इजाजत दियो सुपाने वरी वरंदासे अवां सा गड हुंदासे कचहरियों कंदासे ये मोहब्बतों कायम दायम सलामत रहन सलामत हो शाद हो आबाद हो ये आखिरी अजो के ढी जो बाकी अवां रब का दुआ तो झुकी जिंदगी माणो बच्चन सा गुड गड जो तो खुश हो शाद हो आबाद हो। मुमताज लाशारी की आवाज में खूबसूरत ट्रैक इंजॉय कंदासे मुख्य यानी आबिद चौहान के दींदा इजाजत सुभाने वरी मिलंदासे सन सलामत साथ सलामत अल्लाह निगहबान।

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310519, 03003105109।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी शिपमेंट है, ये कौन सा जहाज है जो रात को उड़ता है और अगले दिन 11:30 बजे पाकिस्तान पहुंच जाता है और वो कीमतें जो हैं बढ़ा दी जाती हैं। ये लेवी जो है इसके ऊपर खत्म की जाए फौरी तौर पर।
2: पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस, दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट इट में से नो। The I David and the resolution is carried।
3: हम इनकी भरपूर तायद करते हैं रेजोल्यूशन की और हम वफाकी हुकूमत को हम गुजारिश करते हैं कि अगर जब तक आपके इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं, हमें आपकी मजबूरी पता है, तब तक आप लेवी को खत्म करें ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना हो।
4: इनके हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, मेरा ख्याल इनको ये डर होगा कि इनके मुखालफत के ऊपर से इनकी नौकरियां खत्म हो जाए।
5: सिंध असेंबली पेट्रोल जो कीमतों घटाने बाबत ठहराव मंजूर करे वरतो। एमक्यूएम पारा मुखालफत, सीनियर वजीर शजीला मेमण पारा वफाकी हुकूमत का पेट्रोल से लागू लेवी खत्म करने जो मुतालबो। शजीला मेमण चयो तो 2008 में पेट्रोल महंगो थे एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत का धार थी वही हुई, हाने भी एमक्यूएम वफाकी हुकूमत की इतिहादी है, हुकूमत से मामले से गलए पघारदार तबको पीसी वो है। वफाकी हुकूमत होश का कम वे पेट्रोलियम लेवी खत्म करे। सूबाई वजीर सईद खनी वफाक में नौकरी खत्म थे खौफ का एमक्यूएम ठहराव की मुखालफत कई।

0: अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़, 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिं जी बहाली में रंडकूं आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
4: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-4056 ऐं तौकीर अहमद 0306।

पार कर लिया। रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई, लबनते मुर्का विखरल दिलन में आबे आई। चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनिया, चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनिया।

GFM नेटवर्क ऐं दिलि जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि तमामु सभिनी मानाइतनि महबूबनि दोस्तनि प्रिय प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदी।

गणप कौन है, शुमार कौन है। गणप कौन है, शुमार ना है, जो माप जे सो प्यार ना है। गणप कौन है, शुमार ना है, जो माप जे सो प्यार ना है। बाहुन में बखजे पवे थो जेको, बाहुन में बखजी पवे थो जेको, उन्हीं खा उम्दो को हार ना है। मफाद खातिर हले तुझे को, मफाद खातिर हले तुझे को, उहो भी समझो तैयार ना ही।

इहे तू वाइज वराए पहजा, इहे तू वाइज वराए पहजा, बुधण लै कोई बे तैयार ना है।

सिधियूं ऐं सादियूं असां जूं ॻाल्हियूं, सिधियूं ऐं सादियूं असां जूं ॻाल्हियूं, सभई थो समझे हू ॿार नाहे। हलाए हिकड़ी वयो हू गोली, हलाए हिकड़ी वयो हू गोली, ॾुखनि खां ख़ाली को ॾार नाहे। को खेप अर्पे को कैफ चाढ़े, को खेप अर्पे को कैफ चाढ़े, अञा को अहिड़ो खुमार नाहे। गणप कोन्हे शुमार नाहे, जो माप जे सो प्यार नाहीं।

वंस अगेन बीहर एक भेरो वेलकम भलीकार खुश आमदीद प्रोग्राम जे पैटर्न मौजिब असा बुधंदास एक खूबसूरत ट्रैक नुसरत फतेह अली खान जी आवाज़ में ही प्यार भरे मोहब्बत जो पैगाम अवा सभी महबूबन के नाव

0: जी दोस्तों वक्त थो है नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक का वरी वरंदासी बुधंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जली।

0: इनजो सां हर किस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जा पीउ रेडीअ ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया भला इहो त ॿुध ऐं वठी अच
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा
3: हा भाग भरी चङो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचा
4: जीजा चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100

थोरी घणी जेका त तकलीफ़ बर्दाश्त इहो अव्हां जो इंतज़ारु इहो अञा वधीक चाहु चस वधाईंदो आहे। मूंखे बि ओतिरी बेसब्री हूंदी आहे जेतिरी अव्हां जेको आहे त इंतज़ारु कंदव कॉल करण लाइ। पर कॉल में त ॻाल्हि हिकु अधु दोस्त सां थी रही हूंदी आहे, बल्कि हिक सां ई एट द टाइम बाई अक वक़्तु हिकु माण्हू सां ई ॻाल्हि थी सघे थी। ॿिया दोस्त असांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया हूंदा आहिनि त पोइ उन्हनि लाइ बि असांखे ॻाल्हियूं कजनि। ॻाल्हियूं दिलि जूं प्यार वारियूं हुअणु घुरिजनि, ॻाल्हियूं दिलि जूं मुहबत वारियूं हुअणु घुरिजनि। नफ़रतनि खे एरेज़ कजे, रेज़र खणी जीअं नंढड़ा ॿार को ग़लति लीको पाए विझंदा आहिनि कॉपीअ ते पेंसिल सां त उनखे मिटाए विझंदा आहिनि। वॾड़नि जी लाइफ में उहे लीका ॾाढा जेके आहिनि त निशान छॾे था वञनि, सो उन्हनि खे मिटाए कोन था पिया सघूं। सो कोशिशि कजे नफ़रतनि खे मिटाइजे, पर थींदो आहे इंसान खे पंहिंजनि मझां ई का तकलीफ़ हूंदी आहे त ॾुख बि पंहिंजनि जो हूंदो आहे। कंहिं राह वेंदड़ खां कॾहिं का शिकवा को शिकायत कंहिं कोन कई आहे। सो प्यारनि सां ई थींदो आहे, पर वरी जॾहिं उहे प्यारा जॾहिं असांजे विच में मौजूदु न रहंदा आहिनि त पोइ तॾहिं असांखे उन्हनि जी ग़ैर मौजूदगी में अहसासु हूंदो आहे। तॾहिं असां उन्हनि जे लाइ इहो चवंदा आहियूं त माण्हू प्यारा अलाए काॾे विया, प्यार वारा अलाए काॾे विया।

दोस्तों वक्त थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।